हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की छठी तिथि तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 26 सेकंड्स हो गए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10 बजे और रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

किसान भाइयों का कार्यक्रम शाम 7 बजे होगा खेती बाड़ी। बहने अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी शाम 5:30 पर। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे। माटी के स्वर कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। रात 8:15 पर सुनिएगा सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से। विविधा कार्यक्रम में रात 8:30 पर सुनिए झलकी भोपाल की ट्रेन। रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और 9:20 पर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए स्वानी शिंदे और पंडित संजीव अभयंकर के गाए कुछ भक्ति गीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एल्बम सॉन्ग्स आप सुनेंगे सुबह 9:40 पर और फिल्म संगीत आपको सुनाया जाएगा 10 बजे गाने पुराने जमाने के प्रोग्राम में और 10:30 पर गाने नए तराने नए में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए और प्रदेश में दो दिन मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान। 29 जुलाई से मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कार्यबल में पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व शिक्षा सचिव अनिता कारवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीना भी कार्यबल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया कानून पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके माध्यम से पूर्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में इन एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों को धरातल पर उतारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने भूमि आवंटन और अन्य स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव स्तर पर एमओयू के नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ निवेशकों से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर भी बैठक की। उन्होंने कहा कि ये दिवस विश्वभर में बसे राजस्थानियों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंधों को और मजबूत करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से लगातार संवाद बनाए रखने और नए चैप्टर्स जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्रवासियों को प्रदेश के विकास और निवेश में भागीदारी का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी के लिए विभिन्न शहरों में रोड शो करने और विभिन्न

0: क्षेत्रों से जुड़े सेक्टोरल सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष कार्यक्रम शेखावाटी में ही आयोजित किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने ये बात एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। राज्य मंत्री ने कहा कि एम्स जोधपुर निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री युवा डॉक्टरों से सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज की सेवा करने का आह्वान किया।
1: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पांचवें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे MBBS के डॉक्टर्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
0: जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 गोडावण चूजों को नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। वन विभाग ने इसे गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के ACF अशोक सिंह ने बताया कि अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र में तैयार होने वाले चूजे इंसानों की देखरेख में बड़े होते थे, जिससे उन्हें जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में कठिनाई होती थी। उन्होंने कहा कि रिवाइल्डिंग टनल का उद्देश्य चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा सके और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके।
2: जो ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हुए हैं, उनको फील्ड में रिलीज करने के लिए पहले रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसलोड किया जाता है और ट्रांसलोड करने के बाद में लगभग उनको 4 महीने उसमें रखा जाएगा। उनको फील्ड में सर्वल की ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर फील्ड में रिलीज करने का प्लान है। GIB के रामदेरा में जो ब्रीडिंग सेंटर है उसके पास में ही रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जिसका पैमाना 160x64x14 मीटर है।
0: प्रदेश में 2 दिन मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के फिर सक्रिय होने और पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी वर्षा का अनुमान है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। जालौर, सीकर, हनुमानगढ़ के संगरिया और आबूराज में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। डूंगरपुर और पाली में आज रिमझिम बरसात दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर में बरसात का दौर बंद है, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश से चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। जिले के झरेल के बालाजी रपट पर करीब 1 फीट पानी बहने से मार्ग बाधित है। भारत की मीराबाई चानू ने ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलो भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलो के रिकॉर्ड का तोड़ प्रदर्शन के साथ ये पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। भारत ने भारोत्तोलन में 2 रजत पदक भी जीते। ऋषिकांत सिंह और राजा मुथु पंडी ने ये पदक प्राप्त किए। उधर विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर भारत की अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिश्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में आज लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 9:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में कुछ भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए स्वाति शिंदे की गाई ये भक्ति रचना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
4: लीजिए प्रोग्राम की अगली भक्ति रचना सुनिए, पंडित संजीव अभयंकर के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 9:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए एल्बम सॉन्ग्स में कुछ गैर फिल्मी गीत। आज की फनकारा हैं आबिदा बेगम। लीजिए सुनिए इनके गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

एल्बम सॉन्ग्स प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे आबिदा परवीन की गाई कुछ गैर फिल्मी कलाम। हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आप सुनिए गाने पुराने जमाने के। आइए इस प्रोग्राम में सुनते हैं प्रोग्राम का पहला ये गीत।

0: रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लीजिए पेश है लता मंगेशकर का ही गाया एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आरजू से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म बरसात की रात से. इसे गाया है मोहम्मद.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए प्रोग्राम का अगला गाना सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में। फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लता मंगेशकर का गाया गीत सुनिए फिल्म जुर्माना से।

और प्रोग्राम के आखिर में ये सुनते हैं ज्वालामुखी फिल्म का गीत। इसे गाया है आशा भोसले, हेमलता किशोर कुमार और महेंद्र कपूर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिम चैनल से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है गाने नए तराने नए।

0: हॉलीडे फिल्म का गीत अभी आपने सुना, बेनी दयाल की आवाज में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, 22 डेज फिल्म का गीत। इसे गाया है पलक मुछाल, अरुण देव यादव और साथियों ने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: लीजिए पेश है फिल्म स्वीटी वेट्स एनआरआई का ये गीत, जिसे गाया है जसबीर जस्सी, सोनिया शर्मा और अक्सा सिंह ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
3: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, मीत बरोज, कनिका कपूर और साथियों की आवाज में, फिल्म का नाम मुन्ना माइकल।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

आइए अब हम आपको सुनवाते हैं हाउसफुल 3 का ये गीत, जिसे गाया है शारिब तोशी, नक्शाजीज, दिव्या कुमार और अनमोल मलिक ने।

लीजिए प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म थ्री बेचलर्स से। इसे गाया है कल्पना, अरविंदर सिंह और साथियों ने।

0: फिल्म संगीत के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए। हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

नवाब आरजू की रचना आप सुन रहे थे, ललित का संगीता, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो को आपने सुना। फिल्म एल्बम रात का ये गीत हमने आपको सुनवाया। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कल्याण जी, आनंद जी का सर्वाध्यक्ष ये भजन आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी। अलका याग्निक और साधना सरगम के स्वरों में नास्तिक फिल्म से ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: राजेश्वरी सजदेव को आप सुन रहे थे एल्बम थी हुल्ले हुल्ला रे, नक्श लालपुरी के बोल थे अमर हल्दीपुर की तरह थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।

0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म अप्रैल फूल से, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
0: लाया? कौन लाया? विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: पॉइंटर बाबू इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, कमर जलाला बादी और मनोज कुमार के बोल थे उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं लम्हे फिल्म का गीत आपने सुना, शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाजें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की और साथियों की भी आवाजें थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल,
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

0: बप्पी लाहिरी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

पिछले दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोता मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: कल्याण जानन जी की तर्ज थी इंदिवर के बोल, मुकेश की आवाज, फिल्म सफर का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
3: कौन?

आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सभा के प्रसारण मुंबई केंद्र से। ये कार्यक्रम जारी रहेंगे हिंदी में। प्रादेशिक समाचारों के बाद भी हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। लोकसभा में आज सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रश्न पत्र लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करना है। विधेयक पेश होने के कुछ ही देर बाद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष से विधेयक पर चर्चा में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि ये छात्रों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट कल नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल के कथित अत्यधिक प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पुलिसकर्मियों पर हमले के संबंध में उनके परिजनों की ओर से दायर अलग याचिका पर भी साथ में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून सम्मत विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले में न्यायालय की सहायता करेंगे। अजमेर की आनासागर झील के संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए 22 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से कार्य शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज वैशाली नगर में इस परियोजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत झील में गिरने वाले नालों की ट्रिपिंग प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि गंदा पानी झील में न पहुंचे। परियोजना में झील के संरक्षण और पर्यावरण सुधार से जुड़े अन्य कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जल गुणवत्ता में सुधार होगा और आनासागर झील की प्राकृतिक सुंदरता के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 12 जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत पात्र युवाओं के पंजीकरण के लिए आज से विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असवानी अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के शुरू होने के 5 दिन में ही 5,000 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। राज्य में इस योजना का पायलट चरण फिलहाल केवल 12 जिले और जयपुर की बगरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए भीलवाड़ा जिले में रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नगर निगम भीलवाड़ा के वार्ड संख्या 1 से 35 तक के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिमा देवठिया को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भीलवाड़ा को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक और सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक स्किल लैब स्थापित की गई है। करीब 2,14,00,000 रुपए की लागत से तैयार ये लैब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इसमें अत्याधुनिक मैनिकिन और सिमुलेशन आधारित उपकरणों के माध्यम से मेडिकल विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश कुमार जैन ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को वास्तविक मरीजों पर उपचार शुरू करने से पहले सुरक्षित वातावरण में अभ्यास का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आबूराज में 9, जवाजा में 5 और कुंभलगढ़ में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 1:05 हुए हैं, आप फिर से सुनेंगे विविध भारती।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

इस गीत के कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और गीतकार बताने हैं। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि आज के इस खूबसूरत और काव्यात्मक गद्यांश का मुख्य विषय है जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरकर आत्मखोज, धैर्य और रूपांतरण का सफर। ये पैराग्राफ एक संकारात्मक सकारात्मक संदेश देता है। ये बताता है कि जीवन का सफर भले ही अनिश्चितताओं, डर और मुश्किलों से भरा हो, लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य है तो आप हर चुनौती को पार करके अपने जीवन को सार्थक बूंद से मोती बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को भी चुना है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत बारिश की बूंदों की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। बारिश की बूंद की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। उसी तरह आसमान से गिरती भी बूंदें अपने भविष्य को लेकर उत्सुक भी हैं और अनजान भी। अनेकों गिरती बूंदों को अपनी मंजिल का पता नहीं होता। रास्ते में बादल बिछड़ते हैं, पत्थर मिलते हैं, अंधेरी रातें आती हैं और कई बार लगता है कि सफर यहीं थम जाएगा, लेकिन हर बूंद का नसीब ऐसा नसीब मिट्टी में खो जाना नहीं होता। कुछ बूंदें सीप की गोद में ठहरती हैं और समय उन्हें मोती बना देता है। इसलिए सफर की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंद जो बन गई मोती, बादलों के आशियां से बिछड़ बूंदों का जमीन तक का सफर की दास्तां बयां करती इबारत अपनी खुशकिस्मती बदकिस्मती की सूरत हाल पर चिंत सफर का अंत तह मंजिल सीप में आश्रित हो संतुष्टि सह सुखांत हुई। बूंद का ये सफर नामा होना चाहिए। इंसानी दिनचर्या को संदेश दे जाती है। विघ्न बाधा सामयिक होते हैं, मनोबल से मंजिल देर सवेर जरूर मिलती है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी मंजिल क्या थी और क्या आपको मंजिल पाने में कोई कठिनाई सामने आई। वैसे मंजिलों की राह कठिनाइयां तो बहुत सारी आती हैं। बूंद पर अगर कोई कविता आपने पढ़ी है या आपने खुद लिखी है तो आप हमें बता सकते हैं श्रोताओं। और इस गीत में आपको कलाकार भी बताने हैं और संगीतकार बताने हैं।

श्रोताओ, आपके शहर में बूंदों का क्या हाल है, यानी बारिश का क्या हाल है? बारिश हुई कि नहीं? वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमारे वाराणसी में यानी बनारस में तो बारिश नहीं हुई, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एक छोटी सी बूंद जब आसमान से उतरकर सीप के भीतर समा जाती है तो समय के साथ वही बूंद एक अनमोल मोती बन जाती है। ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, इंतजार और धैर्य के बाद ही असली निखार आता है। बूंद से मोती तक का सफर दरअसल उम्मीद, मोहब्बत और जिंदगी के खूबसूरत बदलाव का सफर है, ऐसा ये लिखती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सीप ने बूंद से उसकी मंजिल नहीं पूछी, बस उसे अपने भीतर जगह दे दी। शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जहां अपनापन मिलता है वहीं रहकर वो अनमोल बन जाते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है श्रोता। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि कौन से हैं कलाकार, जी हाँ, वैजंती माला और देवानंद साहब नजर आते हैं इस गीत में। ज्वेल थी फिल्म का गीत था, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। और आरजू फिल्म के गीत में गीतकार थे हसरत जयपुरी, राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया गीत हमने आपको सुनवाया था। और एक सवाल और है आपसे कि आजकल बारिशों में एक फूल बड़ा नजर आता है श्रोताओं, और वो फूल क्या आपने देखा है? हमारे यहाँ तो इसे गुल मेहंदी का फूल कहा जाता था और हर जगह ये दिखाई दे जाएगा बारिशों के मौसम में। क्या आपने देखा है? वैसे कई रंग में खिलता है, आपको अगर पता हो, आपने अगर देखा हो या आपकी बगिया में अगर है तो आप बता सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब बूंद आसमान में है तो उसमें जिज्ञासा भी है और अनजाने का डर भी। दलदल पत्थर, निर्जन बसेरों पर गिरकर, यह हमारे जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम किसी नए मोड़ पर कदम रखने से डरते हैं, कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। जब हम अज्ञात के डर को छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो जीवन की चुनौतियां हमें नष्ट करने नहीं बल्कि हमें निखारने और मोती बनाने आती हैं। जी हाँ, कष्ट तो होता है, बहुत सारी जो रास्ते में अड़चने हैं वो भी आती हैं, लेकिन फिर भी आगे का रास्ता यानी सफर तो जारी ही रहता है। यही हाल बूंद का है और हम सबका भी। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ और संगीतकार।

फिल्म का गीत आपने सुना, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया नौशाद की तर्ज थी, और इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उन सभी श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो कार्यक्रम में नए जुड़े हैं। एक श्रोता ने हमारे लिखा है कि बनारस में छिटपुट बादल बरस रहे हैं और सुरीला सफर में फिर बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, संभावना है, लेकिन देखते हैं कि बरसते हैं या नहीं। तो इन्होंने गीत भी पसंद किया है, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, जिंदगी का सफर, तमाम गीत। एक और हमारे और श्रोता लिखते हैं कि मैं एक शेर पेश करता हूँ अपने श्रोताओं की नजर करता हूँ। सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को खराब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30 से 35 मोबाइल आपने खराब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफर प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है, जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा के अदृश्य हाथों में हाथ डालकर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों नदियों पौधों सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें हैं श्रोताओं, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है, और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

मीनू मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं, प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है, सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है, हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारी और श्रोता लिखती है कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं, वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी ही विनम्रता से धरती में समा जाती हैं, न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती हैं। अगर ये बूंदें अपने बादलों से बिछड़ने का साहस न करती तो शायद धरती कभी इतनी हरी भरी न होती। कभी कभी जीवन में बिछड़ना भी नई शुरुआत का कारण बन जाता है, यही अनंत सफर बादल से धरती, धरती से नदी, नदी से सागर और फिर सागर से बादल, सफर चलता रहता है कभी थमता नहीं। मुझे एक बात बताइए श्रोताओं, क्या आपने ओस की बूंदें देखी हैं और क्या इन्हें पत्तों पर कभी छुआ है, तो जरूर बताइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि बारिश के मौसम में बादल आसमान में छाए हों और बारिश न हो रही हो तब भी बूंदों का एहसास मन में बना रहता है, जादुई भी है बारिश, संगीत ले आती है, धुआं धुआं सा आसमां बना देती है, बादल भरे भरे गगरी सी छलकाती प्रतीत होते हैं और ऐसे में मन का हाल न पूछो, मन तरल हो उठता है, पिघलते आसमान धरती को कितने सुकून से भर देता है, ये तो हम चारों तरफ की हरियाली देखकर जान जाते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अनमोल फिल्म का गीत आपने सुना और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि

मौसम भोपाल में तो जरूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो। बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतजार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी। मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदे भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंद्रधनुष का दूसरा नाम भी है मेघ धनुष। स्वाति नक्षत्र 22 तारीख से बैठा है, इनका पानी अमृत समान होता है। थोड़ा संचय कर सकते हैं तो करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शीशे की बोतल में भर कर रखिए, ऐसा ये कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मीनू मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल, विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है। और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसे नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं, और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था राजन कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूटकर पानी की बूंदें जब हैं गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती, स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती, बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसे संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदें दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाई जब नन्ही वर्षा की बूंदें चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती, कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है, आप ये गीत सुनिए श्रोताओ और बताइए किस फिल्म का है।

मधुमति का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक अमर शोधा ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरणिया, और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी ये ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचाई से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजोकर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओ? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफर पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं और क्या ऐसा सफर आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफर पर हैं? ये कौन हैं कलाकार श्रोताओं जो सफर पर निकले हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्कुरा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एफएम पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

कहानी श्रोता लिखती है कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सड़क कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बहुत शुक्रिया श्रोताओं, रहिए विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए, जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा, हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नजरों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता

0: प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
0: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
3: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
4: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगी, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी

0: करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
4: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश को आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में छोटी सी मुलाकात फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, रहिए विविध भारती के संग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420

0: 2233 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार। और दीपा जी आपको भी नमस्कार।
2: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार।
1: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई। हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, हेल्दी नमस्कार करते हैं। दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं,
2: जितना और स्वास्थ्य भी।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य जरूरी है। और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से। और अब क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है, कुछ गर्म हो जाता है।
2: गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता या हमारी बहन कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया। तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की और अब बारिश का मौसम है तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं। तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर

0: आपको बचाने के लिए,
1: हाँ
0: उन चीजों की हम बात करेंगे।
1: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दिनों में, बिजली के तार कहीं खुले हैं कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
0: बिल्कुल
1: आगे करेंगे।
0: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं, तो उस वक्त आप अपना बचाव कैसे करेंगे, और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
0: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है, लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो इसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
1: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
0: हाँ,
1: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्के दी रोटी और सरसों का साग, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता
0: बिल्कुल, अभी
1: है।
0: बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी सरसों दा साग इसकी बहार ही बहार होगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें, इस बारे में ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा,
0: हाँ,
1: इस बारे में जरूर बताइएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर
0: हाँ,
1: सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
0: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं,
1: जी
0: लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है।
1: जी
0: लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
1: बिल्कुल। और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
0: कहानी का। हाँ,
1: जी,
0: तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
1: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे
0: तो
1: कि कहानी
0: ये तो हुई
1: कैसी है।
0: आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात, तो कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेना बड़ा जरूरी है।
1: चलिए

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
2: कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।
3: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए हैं नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
4: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं, ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
3: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
4: मनोहर, तुम सच ही आ गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
3: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
4: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
3: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
4: अच्छा, स्वीकार है, 1 सप्ताह में अवश्य।

0: फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में दो एक दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहां अपना भोजन बनवा लेता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को एक सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, दो चार आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है, मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है, इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
1: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था, मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं, उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है, तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
0: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
1: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं, तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता, अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं, वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते।

0: सोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं? मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
1: चाचा जाने भी दो।
0: पर बेटा, समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी चार छह के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा, सौ बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, यह भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
1: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
0: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
1: चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
0: बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
2: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
1: चाचा बापू से ये हाल कहां है?
0: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और दो दो तीन तीन दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
1: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
0: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
1: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
0: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
1: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
0: अरे बेटा, भगवान तुम्हें

चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पर।

0: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
1: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
2: बिल्कुल,
1: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
2: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियां यहां बैठे, कि अगर जीवन में भरोसा ना हो ना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना हो,
0: हाँ
1: तो ये अगला जो जो 1 घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप
0: बिल्कुल।
1: सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
0: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे, और वाकई बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं,
1: जी
0: लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें,
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा।
1: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
0: हाँ
1: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
0: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यावसायिक तौर पर, दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से,
0: हाँ
1: हाँ, और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है। तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता,
0: ये तो बात सही है।
1: बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता।
0: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है।
1: बिल्कुल
0: कसमें खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेगा लिया लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
1: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
0: हाँ
1: ऐसा नहीं होता है ना
0: बिल्कुल नहीं होता।
1: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों,
0: बहुत सही बात
1: है
0: कही
1: ना,
0: तुमने।
1: या
0: हाँ
1: फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हुआ हो।
0: हाँ
1: इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध, चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या
0: भरोसा, यानी विश्वास। बहुत सही
1: हाँ,
0: बात कही
1: और
0: तुमने।
1: जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग-अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
0: दीपा बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे ही भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता,
1: जी
0: क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं, तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है, तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
0: बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जो हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
1: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
0: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
1: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
0: हाँ,

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो वाकई
1: जी
0: दुख पहुंचता है।
1: बिल्कुल। और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती
0: और
1: है।
0: उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे
0: बहुत
1: की।
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं आगे। उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते हैं ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पढ़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनाकर बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसमें हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं 1 घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा, पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहां मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
0: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या
1: और
0: ही बात
1: भाई
0: है। और
1: बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
0: बिल्कुल।
1: एक
0: और
1: संदेश में
0: बहुत
1: है।
0: सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहती है कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है, ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें।

0: और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए इसका ख्याल रखें। बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
1: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं, कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में। और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्डी, पालक एक गड्डी, बथुआ एक गड्डी, मेथी एक गड्डी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है, और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3, और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर, और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी के मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें, और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें, और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है, और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो अब अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा
1: आसान हो जाता है, और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं, जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है, जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा।
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: हयातनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
1: जी।
2: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
1: जी।
2: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात,
2: शुक्रिया एक बार और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
2: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
1: ओके।
2: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली।
1: हाँ।
2: और मैंने बीएससी भी लिया था और दो साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
1: ओके।
2: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी, लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूं पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए
1: जी।
2: कि एनवायरमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता
1: जी।
2: पहले साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग। और आपको वो

0: अलग तरह के इंसान बना देता है, क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए, खुद की
1: जी
0: प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
1: जी ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट?
0: जो टिपिकल टर्म है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है,
1: जी
0: ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
1: जी इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
0: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5 7 8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था, प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम हैं, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
0: जी
1: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
0: ड्राइनेस रूप है इसका, एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है, जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें, तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है, और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूं, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए,
1: वो कोई
0: कहीं दूर देखिए।
1: फॉर्मूला बताया गया
0: ट्वेंटी
1: ना?
0: ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्मूला है,
1: जी
0: अब कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन
1: जी
0: एक जनरल है कि आप 1 घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता
0: और
1: है।
0: दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो एलईडी है, पहले एलसीडी थे,
1: जी
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8 10 साल पहले तक एलसीडी स्क्रीन्स थे, अभी एलईडी स्क्रीन्स आए हैं, और एलईडी स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो
0: जब
1: ज्यादा
0: जब
1: चमकीली होती है।
0: ज्यादा चमकीली रहती हैं, तो उसका
1: जी
0: जो ब्राइटनेस रहता है, तो ग्लेयर जो आता है, उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है।
1: जी

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
0: अच्छा,
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी,
0: जी,
1: बच्चों
0: जी.
1: में भी देते हैं जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
0: जी
1: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
0: ओके,
1: अब समझिए जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे आराम से चलते जाएंगे लेकिन
0: सस्टेन करना मुश्किल
1: होता है, तो

0: कुछ लोगों में देखी है, वो आंखों में कोई प्रेशर होता है जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है?
1: नहीं नहीं, आंखों में सभी के आंख में प्रेशर है।
0: जी जी,
1: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
0: जी,
1: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं। बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है। वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है। जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है जिसको ग्लॉकोमा कहते हैं।
0: जी जी,
1: ग्लॉकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
0: अच्छा,
1: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
0: जी,
1: वो
0: जी
1: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में। ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि उस बीमारी में, वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है।
0: जी जी,
1: ग्लॉकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लॉकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए। आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ ही नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
0: ओ गॉड,
1: तो क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लॉकोमा एकदम सरल भाषा में यही है।
0: ओके,
1: आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
0: सूख जाती है
1: और उसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
0: तो रोशनी गई,
1: रोशनी गई।
0: एक उम्र के बाद
1: जी,
0: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
1: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए।
0: उसका फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
1: साल में एक टाइम
0: जी,
1: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
0: जी बिल्कुल,
1: ये,
0: बिल्कुल,
1: ये सेम चीज है,
0: कॉमन सेंस है। तो 40 हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
1: 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
0: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं।
1: संभावना 50% है, माता के साइड से या पिता के साइड से।
0: जी जी,
1: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे ही नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
0: जी,
1: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया।
0: सही बात,
1: कहीं मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
0: पूरे फैमिली ट्री।
1: तो बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती है, हमको विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीज में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लॉकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं।

0: 6 महीने, 1 साल, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक एक दो घंटे निकालिए, सिंपल।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
0: वो भी
1: एक उम्र
0: जांच
1: के
0: कराएं।
1: बाद जरूरी
0: जी
1: तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों
0: जी
1: का प्रेशर वगैरह
0: जी
1: जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं।
0: जी
1: यहां
0: सही है।
1: एक दिलचस्प बात यह है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा।
1: जी
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं, उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया।
1: जी
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे
1: हाँ
0: जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे। अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं।
1: जी
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप समझे। जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है,
1: जी
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए।
1: जी
0: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को,
1: जी
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी। अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है।
1: पेशेंट की बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे कि ये दे रहा है, मैं लूं कि नहीं लूं।
0: तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं,
1: जी
0: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ वो काफी वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
1: डॉक्टर नहीं
0: आंख
1: है।
0: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आंख के आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है, चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है,
1: जी
0: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये है। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए, तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर जो चश्मे का नंबर है वो परफेक्ट होने चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं।
0: जी
1: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है,
0: जी
1: इससे
0: जी
1: बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब
0: जी
1: भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता,
0: जी
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है। वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं,
0: हाँ
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर
0: देखिए
1: तक।
0: ये एक साइंस है
1: जी
0: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप,
1: जी
0: और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना, ज्यादातर लोग आते थे दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो, बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से
1: बिल्कुल
0: लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं,

0: उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो है हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए आप बताइए?
1: जी जी बिल्कुल
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है,
1: जी जी जी
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम
1: यस
0: चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं,
1: जी
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारियां होती हैं।
0: जिम्मेदारी और काम रहते हैं उनका भी। तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना, ऐसे
1: बिल्कुल
0: नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: जरूर
1: उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
0: जरूर।
1: क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
0: अच्छा श्योर।
1: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
0: ओके जरूर,
1: है ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी फिल्म का नाम? 9-2-11।
0: 9-2-11 बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स
0: में। जी, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके, वे तो, लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है. ये दूसरी चीज है, टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना. तीसरी चीज है, काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए. तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है. और अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है इस आंख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, तो आंख बाहर निकल जाती है. आपने दोनों देखा रहेगा, बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए.
1: जी,
0: तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है.
1: और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए? पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा, या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे, तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए.
1: जी कई बार तिरछी आंखें होती हैं, तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी के वजह से भी होती है, अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं. शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं, अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना
0: जी
1: चाहिए, और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है. मैं आपको ऑनेस्टली कहता
1: जी
0: हूं, वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता. एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम
1: जी
0: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं. आप
1: बिल्कुल
0: कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है,
1: बिल्कुल
0: जिसके
1: बिल्कुल
0: अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है. अभी आपके लिए, इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है.
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत जरूरी है. आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत जरूरी है. पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूं क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल। आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे PhDs आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और
1: विद्वान
0: सभी
1: लोग हैं
0: बहुत ही हमसे बड़े PhD हैं सारे।
1: जी।
0: अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियाँ ऐसे रगड़ो तो आपके आँख का नंबर चले जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि
1: ओके
0: डॉक्टर साहब अगर हम आपके ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे, मतलब कर लगे रहो, तो बोला कितना टाइम, मतलब लगे रहो वहाँ पे, आप मुझे आके बताओ। तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, GM डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
1: बिल्कुल
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं,
1: जी
0: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग तरह की सावधानियां।
0: उसकी अलग तरह की सावधानी है
1: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट,
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक
1: जी
0: चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से।
1: जी जी जी
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है, और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो
1: जी
0: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसे
1: हाँ
0: नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा, जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है, आंख का नंबर आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है, वो
1: जी
0: आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था, तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
1: हाँ बिल्कुल, तो
0: आप
1: फिर आप
0: समझे? तो
1: इस
0: ये
1: पे भी सवाल नहीं उठा सकते।
0: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है। सवाल तो जरूर उठाइए।
1: जी जी
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल,
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं,
1: जी
0: और ये उल्टा साइंस है। जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है, हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
1: वो क्लियर
0: वो
1: बनेगी।
0: क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए
1: बिल्कुल
0: शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स, दोबारा देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है।
1: जी
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए, सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो है बेचारे, उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है।
1: जी जी
0: ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम है
1: जी
0: आपकी,
1: जी जी
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल,
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं। इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं, आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15-20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है? बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो।
1: बिल्कुल,
0: मैं तो ऑलवेज कह रहा हूँ, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए? दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? दृष्टि,
1: बिल्कुल
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
0: जी,
1: अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना
0: और
1: चाहिए।
0: 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि
1: जी
0: बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है।
1: जी
0: ये ग्रोथ,
1: जी
0: जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
1: जी
0: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आंख, बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते
1: जी
0: हैं, बड़े
1: जी
0: नंबर वाले चश्मे लग जाते
1: जी
0: हैं। वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि
1: जी
0: चश्मा हटाया जा सकता
1: जी
0: है?
1: जी तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है।
0: जी
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी
1: उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टेडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है।
0: अच्छा,
1: उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूं 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स है, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 साल तक नंबर स्टेडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
0: तो
1: और
0: नहीं कर
1: लेजर हो
0: सकते।
1: जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आंख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है। आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो
0: जी
1: जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
0: करेक्ट,
1: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है। एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो, अगर 20 पे आपने करवा लिया तो।
0: जी
1: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है, कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो, काफी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है।
0: जी
1: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे,
0: जी
1: आंख
0: जी
1: जो है तो वही है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा
1: उसका
0: है।
1: सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है,
0: जी
1: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
0: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है,
1: जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
0: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
1: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है बुजुर्ग लोगों के, और ज्यादातर मोतिया होने के ऑपरेशंस किए जाते हैं,
0: जी जी
1: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं वो ऑपरेट करके, जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है,
0: जी जी
1: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं,
0: जी बिल्कुल,
1: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है कि जब आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप समझे कि नहीं, ये ऑपरेशन है
0: जी,
1: तो आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है। आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबॉडी। जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर, तो मैंने करवा लिया।
0: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है।
1: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है
0: जी।
1: और हम कितनी भी कोशिश करें, तो जैसे मैंने कहा अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहां वहां है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है।
0: बिल्कुल,
1: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं
0: जी,
1: बिकॉज इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
1: तो आंख तो, और आंख को तो सबसे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा ऐसे, आंखों के थ्रू ही दिखेगा।
0: परफेक्ट बात है। यहाँ एक गाना सुनते हैं
1: जरूर,
0: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी।
1: अरे वाह।

0: दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा,
2: अभी एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। FM एंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। अब युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते, रास्ता मुश्किल हो तो क्या उद्देश्य नहीं बदला करते। हार या जीत दो ही तो औहदे हैं, पराजय की डर से कोशिश नहीं छोड़ा करते। अवसर देर से ही सही मिलते जरूर हैं, निराश होके जिंदगी के कपाट बंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 MHz पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, युवाओं में बदलती फास्ट फूड लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, ये फास्ट फूड नामक शब्द आते ही हम सब कुछ समझ जाते हैं। आज का समय, युवा, उनकी पसंद, छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़ी एज तक के लोग जो हैं, इन सब चीज़ों के ग्रस्त में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज के समाज का एक बड़ा सच बनते हुए ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। आधुनिकता, भागदौड़ बड़ी जो जिंदगी है, विज्ञापनों के प्रभाव ने युवाओं के खान पान के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बहुत बड़े कारणों में एक है समय की कमी। पढ़ाई और नौकरी की जो व्यस्तता है, उसके कारण युवाओं के पास खाना पकाने का समय नहीं होता। साथ ही सोशल मीडिया, इस प्रकार का सोशल मीडिया का जो रोल है, वो फूड ब्लॉगिंग देखकर युवा नए नए आउटलेट्स पर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। साथ ही आसान उपलब्धता, इस प्रकार से अलग अलग ऐप्स के जरिए एक क्लिक पर खाना घर पहुंच जाता है, उस वजह से वो कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते। साथ ही महंगे कैफ़े में जाकर बर्गर पिज़्ज़ा खाना, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक बहुत ही ट्रेंड में आने वाला कार्य बन चुका है। दोस्तों, निश्चित रूप से सबसे अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, और दिन ब दिन आने वाली अलग अलग प्रकार के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके द्वारा हम इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहे हैं, जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो फास्ट फूड में मौजूद अत्यधिक कैलोरी और फैट वजन को तेज़ी से बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। साथ ही जो हमारी मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य, जो आज का एक बहुत ही चैलेंजेबल विषय बन चुका है, ज़्यादा जंक फूड खाने से सुस्ती आती है, जिससे मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, जो हम छोटे बच्चे से लेकर बड़ी एज तक में आसानी से देख सकते हैं, अपने आसपास, अपने घर में भी। बहुत ही छोटी एज में पहले बीमारियों का नाम नहीं होता था, लेकिन आज डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां युवाओं में भी आम बन चुकी है और छोटे बच्चों में भी। पाचन तंत्र की कमजोरी, मैदे जैसे पदार्थों का प्रयोग और अधिक इस्तेमाल पेट की समस्याओं को जन्म देता है, और इस कारण पाचन तंत्र भी गड़बड़ा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा स्वास्थ्य है, उसे हम कहीं से खरीद नहीं सकते, उसे बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। एक एज में हमें, हम यूँ कहें कि हर एक छोटे बच्चे को बड़ा करने में उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान और हर एक खान पान में उनका ध्यान होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनका खुद का डिसीजन होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत, या फिर मुझे सूट नहीं करती है, मुझे नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार का डिसीजन ले सके हर एक बच्चा, हर एक आने वाले समय का नागरिक। उस तरीके की सोच के साथ हमें काम करना होगा, तभी हम सुधार देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे खान पान से जुड़ी। अब हम चलते हैं संगीत की ओर, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स खेलों की, और उसमें भी महिलाएं और युवतियों की क्या भागीदारी रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय और वैश्विक स्तर पर एक नया इतिहास रचा गया है। आज महिलाएं न केवल खेलों में हिस्सा ले रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीत कर देश का नाम भी आगे बढ़ा रही है। अगर हम बात करें सफलता के जो नए कीर्तिमान हैं, वो किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव के रूप में हमें देखने को मिले हैं, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में भारतीय महिला एथलीटों ने देश को सबसे ज़्यादा गौरवान्वित किया है, जो हम अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से भी दोस्तों समझ सकते हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना और विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी आज करोड़ों युवतियों की प्रेरणा बन चुकी है। निश्चित रूप से हमें प्रेरित होकर जीवन में हर एक मोड़ में आगे बढ़ते हुए उन सारी स्थितियों का सामना करते हुए निश्चित रूप से पॉजिटिव रहना होगा। विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत और महिला क्रिकेट टीम की सफलताओं ने इसे पुरुषों की खेल जितना ही लोकप्रिय भी बनाया है, जो हम अच्छे से जानते भी हैं। दोस्तों अब युवतियाँ केवल बैडमिंटन या टेनिस तक सीमित नहीं, बल्कि कुश्ती, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे खेलों में भी आगे आ रही है। निश्चित रूप से अब माता पिता बेटियों को खेल को एक करियर के रूप में चुनने की अनुमति और प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी पहलों ने जमीनी स्तर पर जो युवतियाँ हैं उनको बेहतरीन सुविधाएं दी है। महिला खेलों को अब बड़े ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स का वित्तीय सहयोग भी मिला है, जिससे कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हुआ है। निश्चित रूप से जब प्रोत्साहन मिलता है तो चीज़ें आगे बढ़ने लगती है और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। टीवी और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी महिला खेलों के लाइव प्रसारण ने उनकी जो लोकप्रियता है उसे कई गुना बढ़ाया है। निश्चित रूप से आज भी कुछ चैलेंजेज मौजूद हैं, और हर एक फील्ड में आगे बढ़ते हुए हर एक फील्ड को चैलेंज का सामना करना होगा। एक आगे बढ़ने के लिए, उस रफ्तार को बनाए रखने के लिए, ग्रामीण और छोटे कस्बों में आज भी लड़कियों के लिए सुरक्षित खेल मैदान और चेंजिंग रूम की कमी देखने को मिलती है। साथ ही कुछ एक क्षेत्रों में अब भी लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने या खेलों में जो करियर बनाने को लेकर पुरानी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। महिला खिलाड़ियों के लिए यात्रा, ट्रेनिंग और कैंप के दौरान सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही कई खेलों में आज भी पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली जो फीस है, जो पुरस्कार राशि है, जो प्रोत्साहन है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से भविष्य की राह और सुधार इसमें किए जा सकते हैं और समय समय पर किए भी जा रहे हैं। हर स्कूल में लड़कियों के लिए खेल अनिवार्य होने चाहिए और खेल प्रतिभाओं को बचपन में ही पहचाना जाना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सुधार काफ़ी हद तक चेंज आने वाले समय में और भी करने को

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: जुलाई 2026 यानी कि अभी का जो महीना है, भारतीय खेल जगत के लिए ऐतिहासिक जीत, नए युवा सितारों के उदय और बड़े टूर्नामेंट्स के नाम रहा है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में भारत का निश्चित रूप से दबदबा कायम करने वाले साबित हुए। भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 48 की ग्रा वर्ग में कुल 85 की किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया और लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास भी रचा। साथ ही पुरुषों के वर्ग में भारत

की ऋषिकांत सिंह 60 किग्रा और मथु पंडी राजा 65 किग्रा ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत की झोली में रजत पदक डाले। साथ ही दोस्तों, भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 से हराकर एशियाई खेलों की जो कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार 54 किग्रा ने अपने मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया। दोस्तों, निश्चित रूप से जो युवा टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन है वो भी इसके तहत ही यादगार है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा भारतीय जो टीम है हरारे में खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज को 3-0 से जीतकर क्लीन स्वीप करती है। साथ ही आखिरी मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से मात भी दी। IPL 2026 के इस युवा स्टार ने सीरीज के आखिरी मैच में 81 रनों की तूफानी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता। वैभव सूर्यवंशी को इसके तहत निश्चित रूप से पुरस्कृत किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार मुकाबला जीतकर भारतीय टीम ने ICC पुरुष T20 रैंकिंग में दोबारा शीर्ष नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे खेल जगत की। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है, जो हर चार साल में एक बार होता है। वर्तमान में 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो हैं 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जा रहे हैं। इसका पहला आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से शुरुआत के रूप में हुआ था। भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था, जो कि लंदन में आयोजित हुए थे। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में इसकी मेज़बानी भी की है और वर्ष 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी गुजरात के अहमदाबाद को मिली है। दोस्तों, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इनकी आयोजन की अवधि ग्लासगो में इस प्रकार से ये आयोजित किए जा रहे हैं। बजट और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की जो शहर हैं वो हम यूँ कहें कि कंट्री वाइज डिवाइड किए जाते हैं और उस आधार पे इनको मेज़बानी सौंपी जाती है। अगर हम बात करें इस संस्करण में हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, शूटिंग जैसे कई खेल भी बाहर किए गए हैं। इसके साथ ही शामिल खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। भारत के 125 खिलाड़ी इस बार इन सीमित खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और अपना प्रदर्शन दिखाते हुए भारत को ऊपरी पायदान पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोचो मत साकार करो, अपने कर्मों से प्यार करो, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, कर्म करता रहे आगे बढ़ता रहे, किसी और का ना इंतजार कर, कुछ करना है तो डटकर चल, चलता चल, चलता चल। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आज का युववाणी बस यहीं तक। नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। अब बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त बबीता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैन्य बलों के हाथों में होता है। इसका सीधा सीधा नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। वहीं देश के भीतर कई बार कई कारणों से आंतरिक अशांति पैदा हो जाती है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद गतिविधियों से निपटना, दंगा, विद्रोह, प्राकृतिक आपदा आदि समस्याएं पैदा हो जाती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्यों के पास सुरक्षा बलों की कमी, उनके पास अपर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण, कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए देश में अलग अलग अर्धसैनिक बल हैं। इनमें से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसे CRPF कहा जाता है। भारत में CRPF का गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से ब्रिटेनी शासनकाल के दौरान हुआ था। इस कारण हर साल इस दिन CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। सखियों, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। आज के समय में भी ये प्रीमियम केंद्रीय पुलिस बल है। इसका मूल नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है। आजादी के पहले इसका उपयोग रियासतों में विद्रोह, सरकार विरोधी अभियानों से निपटने के लिए किया जाता था। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के अधिनियम के तहत संगठन का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। 25 मार्च 1955 को CRPF एक्ट लाया गया। इसमें CRPF के संचालन के लिए नियम परिनियम तय किए गए थे। सखियों, CRPF की प्रतिबद्धता और उसके कानून, ये दंगा नियंत्रण, भीड़ पर नियंत्रण, विद्रोह नियंत्रण, आतंकवाद का मुकाबला, अशांत क्षेत्रों में चुनावों को संपन्न कराना, युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ना, एंटी नक्सल ऑपरेशन में हिस्सा लेना, बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समग्र समन्वय, सरकारी नीति के अनुसार शांति स्थापना मिशन में भाग लेना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव अभियान में हिस्सा लेना। CRPF के पास कुल 246 बटालियन है। CRPF का नेतृत्व महानिदेशक DG करते हैं। DG भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। इसके प्रशासन को 6 जोन में बांटा गया है। सखियों, 1962 के चीनी आक्रमण की बात करें तो आक्रमण की पृष्ठभूमि में CRPF एक बार फिर भारतीय सेना के साथ एकजुटता के साथ खड़ा था। इस अध्याय में कर्तव्य की पंक्ति में 8 CRPF कर्मियों के बलिदान की विशेषता थी। सखियों, इसका आदर्श वाक्य, इस बल का मूल मंत्र सेवा और निष्ठा है। CRPF ने नक्सलवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण योगदान दिया। CRPF विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही। CRPF ने विभिन्न विदेशी संयुक्त राष्ट्र तैनातियों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। सैनिकों ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके परिचालन पराक्रम के सम्मान में बल को 1 जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग्स पुलिस पदक वीरता के लिए, 1 अशोक चक्र, 1 पद्मश्री, 49 पुलिस पदक वीरता के लिए, 202 पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए, 5 भारतीय पुलिस पदक वीरता के लिए, 4 विशिष्ट सेवा पदक, 1 युद्ध सेवा पदक, 5 सेना पदक, 114 प्रधानमंत्री पुलिस पदक, जीवन रक्षक और 2 जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो सखियों, हमारे पुलिस बल के लिए हमारा जीवन आगे भी ऐसे ही कामना करता रहेगा, और आज उसकी स्थापना दिवस है तो हमारे परिवार की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सखियों, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।
1: होशिया।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सखियों, भारत में बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं। इनमें से एक सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना खासकर बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एक ऐसी योजना है जिससे न केवल टैक्स में बचत होगी बल्कि बेटी का भविष्य भी सुरक्षित होगा। सखियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की ओर से सफलता से बढ़ने के लिए एक कदम आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अभी से उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा लीजिए। केंद्र सरकार ने इस योजना पर 8.2% ब्याज दर रखा है। केंद्र सरकार की इस बचत योजना पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है। इस योजना में 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। जब तक आपकी बेटी 18 साल की होगी, इस खाते में अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। और अच्छी बात यह भी है कि इस बचत पर इनकम टैक्स में 80C के तहत छूट भी मिलती है। बेटियों के उज्जवल भविष्य और उनकी पढ़ाई शादी जैसे खर्चों के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए बचत योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस बचत योजना को शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से इस योजना को चलाया जा रहा है। सखियों, सुकन्या समृद्धि योजनाओं के उद्देश्य: लड़के और लड़की में भेदभाव को खत्म करना है। जन्म से पहले लिंग जांच कराने की जरूरत को खत्म करना है। लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना है। सखियों, इस योजना की विशेषताएं: इस योजना में 8.2% ब्याज दर, तिमाही के हिसाब से इसमें बदलाव भी हो सकता है। इनकम टैक्स में 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है। 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष निवेश कर सकते हैं। सरकार की गारंटी वाली योजना है, इसलिए सुरक्षित और कोई भी जोखिम भी नहीं है और बेटी के भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है। सखियों, इस योजना के तहत खाता खुलवाने के कुछ नियम हैं। खाता खुलवाते वक्त बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में ही तीसरी संतान के नाम से खाता खुलवाया जा सकता है, जैसे कि अगर जुड़वा बेटियां हो जाए और तीसरी संतान के लिए आवेदन किया जा सकता है। खाता बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक ही खुलवा सकते हैं। पैसा जमा करवाने के जो नियम हैं, उसमें न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए साल में जमा करा सकते हैं। 15 साल तक नियमित रूप से इस खाते में पैसा जमा कराना होगा। 15 साल के बाद पैसा जमा नहीं कराना है, लेकिन खाते में जमा पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा। सखियों, इस खाते से पैसे कब निकलवा सकते हैं? खाते की मैच्योरिटी डेट 21 साल के लिए है, इसके बाद पैसा निकाला जा सकता है। 21 साल के बाद ये पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। अगर बेटी की शादी है तो 18 साल की उम्र के बाद खाता बंद किया जा सकता है। बेटी की हायर स्टडीज के लिए 50% पैसा 18 साल की उम्र के बाद निकाला जा सकता है। हालांकि एजुकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट आवेदन फॉर्म के साथ लगाने होंगे। तो सखियों, हम भी इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सखियों, बातें तो आपसे यूं ही चलती रहेगी, अब आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।
4: Thank you. देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सखियों, उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों की दिलचस्पी, उनकी प्राथमिकताएं और खाने की आदतों में बदलाव आते रहते हैं। ठीक वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ पोषक तत्वों की जरूरत भी बदलती रहती है। हालांकि बदलते जीवन शैली में लोगों के शरीर में पोषण की कमी आम है। कई लोग अपनी फिटनेस और डाइटिंग के चक्कर में खाने में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हम लोगों के लिए कितना पोषण है जरूरी है। साथ ही साथ अलग अलग आयु वर्ग के लिए अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। न्यूट्रिशन की शरीर में विकास के लिए जरूरी होता है। सही पोषण से ही व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हम जो खाना खाते हैं वह काफी हद तक एक जैसा रहता है, लेकिन जिस तरह से हम खाते हैं वह हमारी उम्र या अवस्था के आधार पर बदल सकता है। हम अभी किसी प्रकार का भोजन ले रहे हैं, इसका प्रभाव बढ़ती उम्र के साथ आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। 1 साल की उम्र से ही हमारी बैलेंस डाइट की आवश्यकता शुरू हो जाती है। हम कितने साल जी सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। सखियों, तो ऐसे में हम जानते हैं कि बच्चों को क्या खाना चाहिए। बचपन में एक बच्चे को तेजी के साथ शारीरिक और सामाजिक और विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। बचपन के शुरुआती चरणों में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। बच्चों के विकास के लिए उसे प्रोटीन और आवश्यक फैटी एसिड की जरूरत होती है, जो बेहतर तरीके से मस्तिष्क के विकास में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे आवश्यक मिनरल्स को जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के किशोरावस्था में पहुँचने के लिए उसके शरीर का सही विकास होना जरूरी है। 20 से 40 वर्ष की आयु वालों को क्या खाना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ भोजन के द्वारा इस तरह के पोषण की आवश्यकता होती है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और बीमारियों को रोकने पर जोर दे। इस अवधि के दौरान पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती है, और महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हमेशा आयरन की जरूरत ज्यादा रहती है। सखियों, 40 के बाद लोगों को क्या खाना चाहिए। 40 या इसके बाद शरीर में मेटाबॉलिक परिवर्तन होते हैं। इसके अनुसार पोषण संबंधी जरूरतें बदल जाती हैं। डाइटिशियन के अनुसार हमें अपने आहार में अच्छे फाइटोन्यूट्रिशन, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में हमारी मदद करते हैं और साथ ही साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सखियों, बुजुर्गों के लिए भोजन, यह जो 60 से ऊपर है, इस उम्र में व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है और पहले की तरह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को करने में असमर्थ हो सकता है। तो कुछ लोगों को अपना भोजन स्वयं तैयार करने में भी दिक्कत हो सकती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दांतों की समस्याओं के कारण भोजन को ठीक से चबाने या निगलने में सक्षम नहीं होते हैं। आहार या भोजन का उद्देश्य पोषक तत्वों की कमी को

दूर करना होना चाहिए। कुछ लोग बुढ़ापे में होने वाली असुविधाओं के कारण अपना भोजन छोड़ देते हैं। इस उम्र में हमेशा प्रोटीन का सेवन कम हो जाता है, जिससे मांसपेशियों को हानि हो सकती है। प्रोटीन के साथ साथ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम को डाइट में जरूर शामिल करें। सूप, सब्जी और दाल का सेवन करें। रागी का आटा भी भोजन में जरूर शामिल करें। तो सखियों, कुछ छोटी छोटी टिप्स को अपना कर आप अपने और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। सखियों, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

महिलाएं अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। कविता कृष्णमूर्ति मनहर और सुखविंदर सिंह के गाए इस गीत के साथ जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म का नाम है सौदागर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हसन कमाल का लिखा, महेंद्र कपूर और सलमा आगा का गाया। रवि ने इसे अपने संगीत से सवारा है। फिल्म का नाम है निकाह।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं चंचल काबरा। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ लोक प्रस्तुतियाँ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनिए, चंचल काबरा के ही स्वर में।

0: चंचल काबरा की गायी कुछ लोक प्रस्तुतियां अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।
1: जी, ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी कई बार बाधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए फूड पार्कों और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टरों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर। और बंगाल की खाड़ी से उठे नए मानसूनी तंत्र से राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार स्थगित की गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने और उसकी गरिमा बनाए रखने की अपील की।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र की कार्रवाई पेपर लीक मुद्दे और छात्र आंदोलन को लेकर लगातार बाधित हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित सभी 39 न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
2: 52 ऐसे देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से संबंधित हैं, और इन सभी में मुख्य तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे, जब उन्होंने जब कानून लाया अपने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भी कानून लाया गया उसमें हम सभी उसी कानून से गवर्न हो रहे थे। तो हमारे सैद्धांतिक रूप से इन सभी देशों में जो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है उनमें समरूपता है, तो हम कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले देश हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इन सभी देशों की आज के समय में जो मीडिएशन है, मीडिएशन ड्राइव है, उसके अंदर जब प्रासंगिकता को हमने देखा।
0: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिले के दौरे पर रही। उन्होंने सोजत में शहरी सेवा फॉलोअप शिविर का जायजा लिया और पात्र लाभार्थियों को जमीनों के पट्टे वितरित किए। उपमुख्यमंत्री ने मारवाड़ जंक्शन ओवरब्रिज तथा सिरियारी, सरवाड़ और शिवसागर नदी पर बने पुल तथा विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देने के लिए आज जयपुर में मंथन किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव एपी दास जोशी की मौजूदगी में हितधारकों की बैठक हुई। बैठक में राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने पर जोर दिया गया। फूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों को बढ़ावा देने के साथ ही नई तकनीक के उपयोग और कारोबारियों को बेहतर सुविधा देने पर चर्चा की गई। बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों एमएसएमई एफपीओ निर्यातकों स्टार्टअप्स और बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक में मिले सुझावों के आधार पर जरूरी पहल की जाएगी। केंद्रीय सचिव श्री जोशी ने कहा कि राजस्थान में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण क्षमता विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। राजस्थान नदी बेसिन और वाटर रिसोर्सेस प्लानिंग अथॉरिटी की आज जयपुर में बैठक हुई। इसमें राज्य के जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में जल सुरक्षा, पीने के पानी की आपूर्ति और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए सभी 11 संबंधित विभागों के साथ चर्चा की। उन्होंने सभी को समन्वय के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर बेसिन की समग्र परियोजना तैयार करने तथा फसल चक्र और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 1990 के दशक के बाद से ही सभी 16 नदी बेसिन योजनाओं को समय के अनुसार अपडेट किया जा रहा है। इसके तहत आधुनिक तकनीक, जल दक्षता और नहरी सुधारों पर बल देते हुए सिंचाई कमांड क्षेत्र में बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे नए मॉनसून तंत्र का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इससे पूर्वी राजस्थान में कल से और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में परसों से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। ये सिलसिला 2 अगस्त तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने कल 24 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर छितराई बारिश हुई। सवाईमाधोपुर सहित कई जगह लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम ने रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने डॉक्टर कलाम को एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में याद किया।
3: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर कलाम को नमन करते हुए कहा कि विज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए उनमें अद्वितीय समर्पण था। उनके आदर्श और विचार आज भी करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उनको साकार करने की प्रेरणा देते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का आज 88वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर CRPF कर्मियों के अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। अपने शुभकामना संदेश में श्री मोदी ने माओवाद के खतरे को समाप्त करने में CRPF के प्रयासों को विशेष बताया। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और चुनौतीपूर्ण हालात में नागरिकों की सेवा CRPF कर्मियों के लिए सर्वोपरि रही है। एक रिपोर्ट।
4: देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक CRPF गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका दायरा राज्य पुलिस से अलग और व्यापक होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, दंगा नियंत्रण, आतंकवाद और उग्रवादी रोधी अभियानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में CRPF को तैनात किया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने, नागरिकों की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस पर सलाम। सलेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर भाजपा की ओर से 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि गुरु रविदास के जन्म स्थान वाराणसी में कल कलश पूजन होगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
5: भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा।

0: भर में समरसता संकल्प अभियान के तहत हरि कीर्तन, सत्संग और विचार गोष्ठियां रखी जाएगी। अजमेर में आज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। 4 दिन के इस प्रशिक्षण का आयोजन राजस्व मंडल में हो रहा है। मंडल निदेशक बीना वर्मा ने बताया कि इसमें राज्य के सभी 41 जिलों के सांख्यिकी विभाग और भू अभिलेख शाखाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से GCES पोर्टल पर फसल कटाई प्रयोग को सही रूप से दर्ज करने के बारे में बताया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी कई बार बाधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी जज 31 जुलाई और 1 अगस्त को जयपुर पीठ में मुकदमों की सुनवाई करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए फूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर। और बंगाल की खाड़ी से उठे नए मानसूनी तंत्र के असर से राज्य में अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजेश सोनी। वागड़ अंचल के बांसवाड़ा जिले में पिछले महीने स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़ी कई गतिविधियां हुई। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों के साथ चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत हरिदेव जोशी रंगमंच में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में पचपदरा से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1530 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर इन कार्मिकों से पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा करने का आह्वान किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण कर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मृत्यु की घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 84 चिकित्सा संस्थानों में विशेष शिविर लगाए गए। इनमें 4682 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और आवश्यक स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नियमित जांच और संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक भी किया। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की गई। प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी और महिला स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिलाओं को भर्ती से लेकर प्रसव, उपचार और डिस्चार्ज तक आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगी। इस पहल का उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दिनों मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ और डिप्टी CMHO डॉ. राहुल डिंडोर ने स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता, अभिलेखों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण MCHN दिवस की गतिविधियों की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले को राज्य स्तर पर सम्मान मिला। जनसंख्या स्थायित्व के विभिन्न मानकों में जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं PPIUCD सेवाओं में भी राज्य में पहला स्थान हासिल करने पर जिले को प्रशस्ति पत्र और 4,00,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने आंबाबाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। यहां 700 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने पौधरोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल का भी संदेश दिया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन जारी रहा। इन शिविरों के माध्यम से पालनहार योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाया गया। कई पंचायतों में फॉलोअप शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबीजी

0: जी राम जी के तहत तलवाड़ा पंचायत समिति की माकोद ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय जन सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर उक्त कार्यस्थल पर योजना के तहत कई कार्यों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में रोजगार गारंटी, डिजिटल व्यवस्था और ग्राम विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी दी गई। इसमें श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों जनजातीय आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण कर भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। जिले में राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कुशलगढ़ में एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया, साथ ही एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोकसभा में आए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश। विपखरा हंगामा के कारण संसद रा दोनों सदना री कार्रवाई में आज ही अड़चन आई। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला जज 31 जुलाई और 1 अगस्त ने जयपुर पीठ में मुकदमा री सुनवाई करेला। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास सारू फूड पार्क और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर में नूवी तकनीक काम लेवन माथे जोर। और प्रदेश में आवता एक सप्ताह टाइम बिरखा में बढ़ोतरी रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, संसद रा दोनों सदना री कार्रवाई आज ही विपखरा सदस्या रा हंगामा रा कारण कई दफा टालनी पड़ी। शोर शराबा बीचे लोकसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश कीनो। पेपर लीक री रोकथाम सारू लाइचिया इन बिल में दोषिया ने 10 साल ताई री कैद और वहां माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावन सागे वारी संपत्ति जब्त करण रो प्रावधान है। इनके अलावा मामला रो बेगो निपटारो तय करण सारू सगला राज्यां और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेशां में खास फास्ट ट्रैक अदालतां खोली जावेला जठे मामला री रोजीना सुनवाई वेला। बिल के पेश करती बगत विपखरा सदस्य नीट परीक्षा पेपर लीक रा मुद्दा माथे विरोध प्रदर्शन रे दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई माथे चर्चा री मांग करता थका हंगामो कीनो। इंपरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माय मदद करण अरवारो मान बनायो राखण री अरज कीनी।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: ध्यान जोग है कि 20 जुलाई सरूफिया पावस सत्र री कार्रवाई में पेपर लीक मुद्दा और विद्यार्थियों रा आंदोलन रा मामला न लेर लगातार अड़चन आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला न्यायाधीश 31 जुलाई और 1 अगस्त ने कोर्ट री जयपुर पीठ में मुकदमा री सुनवाई करेला। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा समेत सगला 39 जज इनमें शामिल भेला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा सदस्य सचिव हरिओम अत्री बतायो कहीं दौरान अंतर्राष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलनी राख्यो चावेला। वे बतायो कि सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इन सम्मेलन रो उद्घाटन करेला।
3: 52 ऐसे देश हैं जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज से संबंधित हैं और इन सभी में मुख्य तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे, जब उन्होंने जब कानून लाया अपने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भी कानून लाया गया उसमें हम सभी उसी कानून से गवर्न हो रहे थे। तो हमारे सैद्धांतिक रूप से इन सभी देशों में जो प्रोसीजरल लॉ है या

0: सब्सटेंटिव लॉ है उनमें समरूपता है। तो हम कॉमन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाले देश हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इन सभी देशों की आज के समय में जो मीडिएशन है, मीडिएशन ड्राइव है, उसके अंदर जब प्रासंगिकता को हमने देखा।
1: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज पाली जिला रासोजत माए शहरी सेवा फॉलो अप शिविरों रो दौरों की नो अर पात्र लोगों ने पट्टा दीना। उप मुख्यमंत्री मारवाड़ जंक्शन ओवरब्रिज अर सिरियारी सवराड़ अर शिवसागर नदी माथे बनिया पुल अर विकास रा दूजा कामा रो उद्घाटन ये कीनो। प्रदेश माए खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास माथे विचार करण सारू आज जयपुर माए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए हितधारका री मीटिंग राखी जी। इन माए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव एपी दास जोशी मौजूद हा। मीटिंग रे दौरान राज्य माए फूड प्रोसेसिंग री नुवी इकाइया खोलन पर जोर दियो चियो। इस आगे फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ने बधावो देवन सारू नुवी तकनीक काम लेवन और कारोबारियां ने बेहतर सुविधा मुहैया करावन रे बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्य सचिव कहो के मीटिंग रे दौरान मिलिया सुझावा रे मुजब जरूरी पहल करी जावेला। केंद्रीय सचिव जोशी कहो के राजस्थान माए खेतीबाड़ी और बागवानी रा हलकां रे जरिए नौकरी धंधा रा मौका मुहैया कराया जा सके है। राजस्थान नदी बेसिन और वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथॉरिटी री आज जयपुर माए मीटिंग हुई। इन माए प्रदेश माए पानी जुड़िया साधना रा प्रबंधन माथे विचार करी जियो। मीटिंग माए मुख्य सचिव जल सुरक्षा पीवन रा पानी री पूर्ति और पाणत सारू पानी माए बढ़ोतरी जुड़िया 11 महकमा रा अहलकारा सागे चर्चा कीनी। मुख्य सचिव कहो के राज्य माए 1990 पाछे सगली 16 नदी बेसिन परियोजनावां ने जरूरत रे मुताबिक सुधारी जा रही है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य रा उगनी हलका माए काल और उत्तराद आतुणी हलका माए 29 जुलाई 2 अगस्त ताई बिरखा माए बढ़ोतरी रा आसार है। मौसम विभाग काल 24 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इन बीचे आज राजधानी जयपुर माए कठे कठे छांटो छिड़को भियो। दूजिकानी सवाई माधोपुर समेत कई ठोणा उमस लोग परेशान रहा। देश रा पहली वाला राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन रा नाम जानिया जावन वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आज मारी बरसी रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। डॉक्टर कलाम रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान रा हलका माए देश ने नुवी ऊंचाइयां ताई पुगायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करी चिया मन की बात कार्यक्रम माए डॉक्टर कलाम ने सीख देवन वाला शिक्षक बताता थका श्रद्धा भाव सागे याद कीना।
2: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही डॉक्टर कलाम ने नमन करता था का कहो के वहां माए विज्ञान नुआ काम और देश बनावन बाबत जबरदस्त समर्पण हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डॉक्टर कलाम रा आदर्श और विचार आज ही नौजवाना ने मोटा सपना देख हरवाना साचा करण री सीख देवे है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF रो 88वां स्थापना दिवस आज मनायो जा रियो है। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CRPF रा कर्मचारियां री जबरदस्त हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा री सराहना कीनी है। शुभकामना संदेश माए श्री मोदी माओवाद रो खतरो खत्म करण माए CRPF री कोशिशां ने खास बताई। देश माए हिफाजत री व्यवस्था ने मजबूत बनावण और चुनौती वाला हालात माए जनता री सेवा CRPF रा कर्मचारियां सारू सबू ऊंचो काम है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: देश रा सबू मोटा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बला माए शुमार CRPF गृह मंत्रालय रे अधीन काम करे है। इनरो दायरो राज्य पुलिस ऊ न्यारो वे है। CRPF रा जवाना ने कानून व्यवस्था बनाई राखण माए मदद करण, दंगा माथे काबू करण, आतंकवाद और उग्रवाद रे खिलाफ अभियाना और खास प्रतिष्ठाना री हिफाजत रा काम माए लगायो जावे है। स्थापना दिवस रे मौके मुश्किल हल्का और हालात माए शांति बनाई राखण, जनता री हिफाजत करण और देश रा एका ने मजबूत करण वाला CRPF रा सगला जवाना ने सलाम। समाचार कक्षों सलेहा गाजी।
1: संत गुरु रविदास री 650वीं जयंती रे मौके भारतीय जनता पार्टी री ओरू 29 जुलाई आवता साल 20 फरवरी ताई समरसता संकल्प अभियान चलायो चावेला। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ बतायो के गुरु रविदास रा जन्म स्थान वाराणसी माए काल कलश पूजन सागे शोभा यात्रा रा कार्यक्रम राख्या चावेला।
4: भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 यानी गुरु रविदास जी के जयंती तक लगभग 7 माह तक एक राष्ट्रीय अभियान समरसता संकल्प अभियान के नाम से चलाया जाएगा।
1: इमकर राज्य माई समरसता संकल्प अभियान रातेत हरि कीर्तन सत्संग और विचार गोष्ठियां राखी चावेला। गुरु रविदास भक्तिकाल रा संत कवि और समाज सुधारक हा। वे जातिरा आधारों दुभांत और छुआछूत री करडी खिलाफत करता थका बराबरी और सामाजिक न्याय री सीख दीनी। हर साल माघ महीना री पुण्यु ने वानी जयंती मनाई जावे है। झुंझुनू रेलवे स्टेशन माथे आज सेफ्टी संवाद कार्यक्रम राखी चियो। इन दौरान रेलवे रा जयपुर मंडल रा DRM रवि जैन री मौजूदगी माए कर्मचारियां ओ हिफाजती इंतजामात अर काम री ठौड़ ने बेहतर बनावण जुड़ी राय ली री जी। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का DRM बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत झुंझुनू स्टेशन माथे नुआ बनाई जा भवन रो काम लगभग पूरो फेंक्यो है और इनरो बेगोई उद्घाटन करियो चावेला। चूरूरा सरकारी लोहिया कॉलेज में भारतीय उद्योग परिसंघ CII री ओर मॉडल करियर केंद्र चलायो जा रियो है। इन जरिए नौजवानों ने बैंकिंग माली सेवावां ई कॉमर्स मेहमान नवाजी और डिजिटल साक्षरता समेत कई हल्का माए सीख दी जा रही है। करीब 2 सालों चल रहा इन केंद्र रे जरिए जिला रा 272 गाँव रा करीब 10,000 नौजवानों ने करियर मार्गदर्शन दियो चियो है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले राव। लोकसभा माए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन बिल 2026 पेश। विपक्ष रा हंगामा रा कारण संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई माए आज ही अड़चन आई। राजस्थान हाई कोर्ट रा सगला जज 31 जुलाई और 1 अगस्त ने जयपुर पीठ माए मुकदमा री सुनवाई करेला। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण हलकारा विकास सारू फूड पार्क और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर में नूवी तकनीक काम लेवण माथे जोर। और प्रदेश में आवता एक सप्ताह ताई बिरखा में बढ़ोतरी रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
5: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेती बाड़ी कारीगरन सुनला हेंग धरतीरा धनी कसा भया भया ने आप प्रेम भैरा गणान गणा हेतु और कोडू राम राम। देखो भया चौपाल मत आप आवा चणगर परिवार री खेती बाड़ी री भाई गनाई तारी अथाई करा। और देखो खेती रे माई भी आजकल लोग तरह तरह री खेती करण लाग गया। पहला तो देखो आपने अठे एक खेती हुंती जाबत की बरसाती खेती बिरमाई मूंग मोट गंवर बाजरा जमार ये बीज था। आजकल आपने जो बाई ट्यूबवेल सुविधा है बारे जीरे री मतलब मूंगफली की सरसों की कई तरह की खेतियां करें और फलारी भी खेती करने लाए यार नहीं तई तरह की इनकम वास्ते करें। तो आज आप बात करा चमड़ा री खेती री जबकि चमड़ा री खेती है बा भी कई लोग भाई अगर चावे तो कर सके चौकी कमाई भी कर सके। चमड़ा जकी ना पके वहाँ लोबिया या चमड़ा बड़ी फड़ी जकी मुख्य तहत दलनी फसलें और दलनी खेती रहे तहत लोबिया री फसल आवे आ प्रोटीन शर्करा वसा विटामिन और खनिजों भरपूर है। और ये चमड़ा री जकी खेती है नीरी दाल सब्जी हरी खाद और चारे लिए पूरे भारत में कर सका। और अफ्रीकी मूंदरी फसल है जबकि चमड़ा री खेती है सूखे ने सहन करण में और जल्दी पकना है फसल है ई फसल नमी बनाए रखने में भी मदद मिले। भारत में मुख्य रूप मध्य प्रदेश में कर्नाटक में तमिलनाडु केरल उत्तर प्रदेश राजस्थान ही प्रमुख उत्पादक राज्य है आपने खूब करे राजस्थान में। अगर बुआई रे समय की बात करा तो खरीफ रो मानसून आने पर जून शुरुआत में ले जुलाई रन तक मतलब आप कर सका इन्हें बाद ई ऋतु में चमड़ा री खेती और रबी फसल में अक्टूबर नवंबर महीने में दक्षिण भारत में और ग्रीष्मकालीन में जबकि मार्च द्वितीय सप्ताह लेर मार्च से अंतिम सप्ताह में यानी जगह दाना रे लिए और फरवरी माह में चारे लिए पहाड़ी क्षेत्र में इन अप्रैल मई रे माह भी होगा वहाँ हरी खाद रे लिए मध्य जून जुलाई प्रथम सप्ताह ताई भी होगा वहाँ। अगर बात करा कि बुआई रे समय लाइन लाइन की दूरी तो 30 सेंटीमीटर और पौधे पौधे रो जो फास्ट है वो 15 सेंटीमीटर है और बीज री गहराई री अगर बात करा तो बुआई में 3-5 सेंटीमीटर गहराई करनी चाहिए। बुआई का तरीको ये है कि लोबिया री बुआई दाने और फलियाँ रे लिए लाइन में बुआई मशीन द्वारा और चारे रे लिए छिड़कवा विधि द्वारा करनी चाहिए। जब बीज री मात्रा री अगर आप बात करें तो दाने उत्पादन रे बीज री मात्रा 20-25 किला प्रति हेक्टर मतलब हवा 6 किला में 20-25 ग्राम मोटा मोट 4 किला 1 बीघे में और हरी खाद और चार निर्वाह से समा तो 30-35 किला प्रति हेक्टर। बीज री अगर उपचार की बात करें तो वही पहला बीजा रो थीरम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करना है। खाद और रासायनिक उर्वरक की बात करें तो इनकी खेती के लिए बुआई पहला खेत तैयार कर 15-20 टन या हेक्टर सड़ी हुई गोबरी प्रति हेक्टर मतलब सड़ी हुई गोबरी खाद या कंपोस्ट खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन 10-15 किलो और फास्फोरस 20 किलो प्रति हेक्टर बुआई पहला देना चाहिए और वो ध्यान रखना कि आवश्यक पोषक तत्व परीक्षण के आधार पर ही देना है। आ एक प्रमुख दलहनी फसल है दलहनी खेती रहते थी राई फसल आवे रा प्रोटीन सरकार वसाओं भरपूर भी वे तो यह सब आपने ध्यान रखना है और पचेरो भंडारण भी कर लेना है। और भंडारण रे पहला दाना ने सुखा रही भंडारण कर रहे हैं लोबिया की खेती लगभग 72 क्विंटल दाना और 50-60 क्विंटल भूसा दे हुए हो प्रति हेक्टर मतलब और चाराली फसल में 250-400 क्विंटल तक आरो चारों प्रति हेक्टर दे सके मतलब खूब फसल दे खूब इनकम वाली है। तो आज की लोबिया री या चमड़ा री खेती अपन करनी चाहिए। एक आप और देखा अगर चमड़ा री जकी खेती है इरे माए इरी सब्जी भी बहुत बनी बढ़िया बने और इरी जकी मुख्य रूप में दोमट मिट्टी रे माए या बारी ऋतु में अगर आप पावा तो बढ़िया हो सके। यार बीज में थाने बताई दियो 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टर और दोमट मिट्टी में ज़्यादा वैर जटक गर्म और आर्द्र मौसम होने बैठे भी ठीक वे और इन बार आप बीज दा तो बढ़िया रे वे और बढ़िया खेती है इनकम वाली खेती है कोई दिक्कत नहीं खेती में है को नहीं। तो अपन ने बीज की चमड़ा की खेती है करनी चाहिए इनकम ले सका चमड़ा फली बेच सका दाल उग सके और हरो चारो भी खो हुए तो अपन ने इनकी खेती नहीं करनी चाहिए बढ़ावा देना चाहिए। और बार देखा भया गया आज भी बादल मंडूड है बरसात वाई जिया जिया देखा अगर अपन ना गोरे अड़े गड़े तो मूंग की खेती हो चुकी बाजरे की खेती हो चुकी रही खेती में लोग एक एक महीने में ज़्यादा टाइम निदान भी कर लियो और कोई बच्चिया कुचिया भाई है लगभग खेती कर चुकी है। अगर कोई बचुड़ा तो कोई मोट गंवारी करे विशेषकर जगह 60 मोट और गंवार है मेरी खेती करे और किसान भाई है खेतार माई लाग रही यार खेतारी बड़ी गजब हरियाली यार गजब व्यवहार गंवर रौनक है देखने लायक है। देखो प्रकृति में वेदन अगली बात में बड़े रखियो कि भाई बिन पानी सब सुन पानी है तो हो की है नहीं तो की नहीं आप देखा जके एरिया में नदी दाड़ा हा पेला या जड़े नेर आ गई बटे देखो क्यान की हरियाली रे वैर क्यान की फसल में आपने तो एक ही फसल आप भी रहने रे माई वह पानी अगर नेर आयो तो भाई पीने रो आयो सिंचाई रो आयो को नहीं तो इन वास्ते भया अपन ने बार अच्छी खेती करनी है, ध्यान रखनी है, और जो अमृत वर्ष वर्धन इन लिए एक सरकार अभियान चलाया केस दे रहे वर्षा जल संरक्षण अभियान है। इन वहाँ आपने जो वर्षा जल की बूंद है एक ही व्यर्थ नहीं जमन देनी है, इन्हें आपने डागले और पानी है तो टांके में इकट्ठो कर लेना है, नदी नदी नाला में और जगह भी पानी इकट्ठो हुआ वो भी अपने ना डीरवाई वगैरह करना है इकट्ठो, और बी पानी ने अपने काम लेना है। और अगर आप पार्लर पानी पीवा तो सदा निरोग रहे, वहाँ बीमारी कम लागी, लीवर खराब होनी वे बहुत ही स्वस्थ रही। तो अपने जो को सरकार रो महत्वाकांक्षी अभियान है वर्षा जल संरक्षण रो केस दे रहे अभियान बीरी माई ज्यादा में ज्यादा भागीदारी बढ़नी है। और अपन इन अलावा अब बाहर जगह तो इन माई खूब सारा पेड़ पौधा लगावा तो बे भी हो सके, तो ज्यादा में ज्यादा पेड़ पौधा भी लगाना है। पया देखो अथाई तो करा और पहला लेवा वो ब्रेक।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हाँ तो भैया आप बात करें पहला चमड़ा खेती रीर पचकरी केस दे रहे हैं बयान री रबे देखो थाने रोजी ने कोई न कोई किसान भाइयों मिला करा। तो भैया आज मैं गियो जाइल तहसील रहे गांव रोटू रोटू गांव रे माँ खेजड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, सरकार द्वारा निषेधाखेड निषेध क्षेत्र भी है, इन वास्ते बड़े हिरण भी बहुत खुला घूमे और प्रकृति रो जो मनोरम दृश्य वन्य जीवा रे हाथे पेड़ा रे साथे हरियाली माँ भी एक अलग ही आनंद है। तो इन काम में मन बैठे एक मिलिया पर्यावरण प्रेमी पृथ्वीराज जी बाधु जगह आप खेत में काम करा मैं बहुत करी बतल जगह करा आप तीन पूख थी। किसान भाइयों बात करने वास्ते गांव गांव गया करा और जा परा रथाई कर आप तीन पूख थी क्रिया करा। तो इन्हीं कड़ी में आज मैं नागौर निकलियो और चाल तो पहुंच गयो जाइल तहसीलदारो इतिहासी गांव में रोटू और इन गांव में देखी कि खेजड़ियां बहुत है। तो अटे एक युवा साथी मिलिया जगह आप खेत में काम धंधे लाग रहा बाहर बदल। नमस्कार साहब।
3: नमस्कार।
0: तो आप रोटू की कांकड़े आप रहे?
3: रोटू की।
0: तो खेजड़ियां खल्डी नहीं?
3: खेजड़िया तो एक साथ ही एक रात में ही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लगाई थी।
0: यहाँ के?
3: हाँ।
0: कितनी लगाई?
3: वो 3,000 के आसपास है पूरी।
0: तो ये सारी गेरी कल्डी नहीं दूसरा गवाना का ही कारण है?
3: तो यहाँ खेजड़िया छांगा को नहीं अपा।
0: अच्छा छांगो ही नहीं?
3: नहीं।
0: तो लोग तो छांगे हैं?
3: नहीं नहीं इनकी पूरी वो अपन तो है ना हरे वृक्ष के आते नहीं लगा, काटना तो बहुत दूर की बात।
0: तो जना इतनी गेरी है जना आंधी और टूटे को
3: नहीं? नहीं टूटे बहुत कम टूटे, टूटे तो ही लेकिन कम टूटे।
0: तो बता क्या नहीं छांगे तो अंग लूंग काम आज?
3: नहीं नहीं लोंग जमीन उपजाऊ हुए।
0: अच्छा
3: बहुत अन्न उत्पादन बहुत चार गुणों बतो हुए
0: खेजड़िया।
3: हाँ पचे इनके शरण में रहे हिरण अपने और हिरण कटे जिले में।
0: अच्छा अच्छा।
3: आ एक शरण हिरणांगी जगह शरण स्थली है रोटू ही है तो अपने वो सारे तांटा ही है वो एक वन।
0: नहीं आईडी माने हैं कृषि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि भाई दूसरे पेड़ के नीचे धान वेग नहीं मैं खेड़ ली नीचे दूजनो है।
3: हाँ
0: वो कहीं का
3: वो कारण वही है कि जगी आ वनस्पति है ना वो उपजाऊपन को बढ़ाती है और ये एक खाद का जो कार्य करती है इसलिए
0: खेजड़ी की
3: जगह लूंग है।
0: अच्छा मतलब अनाज ज्यादा है?
3: अनाज ज्यादा है
0: और छाया भी मिले?
3: छाया भी मिले।
0: अच्छा तो अटे मान लो हिरण थारा ज्यादा है तो दूसरा भी पशु पक्षी भी है ही?
3: दूसरा बहुत है।
0: अच्छा मतलब शिकार वर्जित है?
3: शिकार वर्जित है यहाँ
0: तो कहीं आखेड़ निषेध क्षेत्र?
3: आखेड़ निषेध क्षेत्र रोटू में बनुड़ है।
0: अच्छा आखेड़ निषेध क्षेत्र मतलब बैठे कोई शिकार करे?
3: शिकार विकार नहीं करे अटे। अरे वन विभाग की चौकी है, चौकी में 10-15 कर्मचारी काम करे।
0: अच्छा
3: और यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था है इनके रहने की आवास की और सब
0: मतलब चाक चौबंद है मेरे में सब व्यवस्था।
3: शिकार नहीं होता,
0: पेड़ नहीं कटे?
3: पेड़ नहीं कटे।
0: हाँ तो बहुत बढ़िया बात बताई। तो अब तो देखो अमृत वर्ष है, मई में खेती बाड़ी
3: होगी अच्छी बरसात
0: तो कहीं फसल
3: यहाँ कोई कमी गंवार बाजरी जवार मोट मूंग यही फसल
0: है। तो खेती की यानी कितना टाइम है?
3: लगभग 10 जून के आसपास कर ली सब।
0: अच्छा 10 जून की? 10 जून की खेती कर ली। तो अब निदान वगैरह हो गया?
3: निदान सब होगा।
0: अच्छा तो अब कहीं काम रही है?
3: अब की काम को नहीं, खेती को बस रखवाली करो और रासायनिक खाद तो काम जबे को नहीं उरूर करो। अच्छा। कुछ काम नहीं लेते हैं अपने तो अब जब फसल पकेगी तब तक कोई काम आम
0: तो
3: नहीं।
0: खेती करो ना तो बीज दो
3: बीज कुछ तो कृषि केंद्र नागौर ले रहा है।
0: अच्छा
3: और बाकी आपको खुद को घर में ही?
0: अच्छा
3: दुकान
0: दुकानों भी लाओ?
3: दुकानों में भी जावे
0: तो बिल वगैरह लाओ?
3: बिल पक्का बिल जावे सब। अच्छा, जीएसटी का बिल जावे
0: कोई दाव वगैरह करे तो सबूत
3: जावे।
0: यदि दोगो नहीं जावे
3: यदि वो कहीं वगैरह नकली बीज आ जावे,
4: अच्छा,
3: नकली खाद आ जावे, कोई मान जावे तो
4: सही है, तो बीज उपचारित कर डालो,
3: बीज उपचारित करे।
4: अच्छा एक बात है, खाद करी तो खाद थे किस डालो,
3: खाद आपने तो गाय बेचेंगे आई खाद डाले,
4: कंपोस्ट कर डालो खेती कोल्डी
3: कंपोस्ट कम करे हाल इतनी तकनीक हाल आई कोने गांव में
4: तो हिदी कोली
3: सीधी है कोली
4: तो यूं तो कहें धान पचे बलन लग गई थी सारी रेडी को
3: बलन वलन था तो कोनी नुकसान कोने है
4: कमी कंपोस्ट क्या ज्यादा कार करे,
3: कंपोस्ट ज्यादा कार करे लेकिन हाल अपन तकनीक नहीं है चीता जागरूक काल कृषि में कम है।
4: अच्छा
3: ये बात है,
4: खेरा तो बढ़िया बताएगा, अब आप निंदाण कर लियो,
3: निंदाण कर लिया,
4: अब लोग के वैसा उजाड़ कर लो, सुअर उजाड़ है, रोजना को उजाड़ है तो ठीक है,
3: उजाड़ की तो एक भ्रम है, अच्छा। जो हिरण है ना यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं, दूसरे गांव में नहीं है,
4: अच्छा,
3: तो भी यहाँ फसल उत्पादन ज्यादा हुए,
4: अच्छा।
3: हिरण कोई नुकसान को नहीं,
4: लेकिन रोजड़ांगो सोरंगो,
3: रोजड़ांगो तो है थोड़ा बहुत लेकिन तो कोई नुकसान को नहीं ज्यादा।
4: अच्छा तो कई खेत में देखिए तारबंदी यार ठेकी यहाँ
3: नहीं, तारबंदी है लेकिन कम है अमूमन दूसरे गांव की बजाय,
4: तो
3: आपने जमीन गणी है ना भाई, राज की जमीन गोचर भूमि,
4: अच्छा बीर मान जाती है,
3: 1000 बीघा जमीन गोचर भूमि है,
4: अच्छा गोचर मतलब राजरी भूमि
3: है,
4: कोई चरो
3: एक किलोमीटर के दायरे दायरे में तीन जगह है, 1000 बीघा काशीपुरा की जमीन और है
4: गोचर,
3: हाँ गोचर 1000 बीघा, ये गुगरेली की कांकड़ है, एक मान जगीन बोले गोचरी नाम ही गोचर है इसका,
4: अच्छा अच्छा
3: वो पड़ी है 1000, ये रोटू की पड़ी है,
4: ओहो
3: 3000 बीघा जमीन आसपास पूरी है, ये पशुओं के लिए गोचर भूमि पड़ी है,
4: ओहो जनत बात छोड़ो थे, ठीक
3: हाँ।
4: बात बताइए, तो कहीं सब्जियां ही हुई की,
3: सब्जी अब्जी बहुत है, सब है
4: टींडियां
3: वगैरह लोया वोया सब है, तोरू और
4: अच्छा, तो बारो इमृत पर से पानी पर से इन्होंने की संग्रहित करने वास्ते कहीं गिरी और संरक्षण वास्ते,
3: और जब के टांका सब के है,
4: अच्छा बड़ी जल
3: सब जल संग्रहण करे है सब,
4: अच्छा और नाडी तालाब गांव में,
3: नाडी तालाब है बढ़िया तालाब, यहां बहुत है रामसर तालाब के पास में ही है रोटू,
4: तो पानी साफ सफाई करो पहला,
3: साफ सफाई सब करे,
4: अच्छा तो फिर तालाब कटे कहीं हरे
3: तालाब पानी गुल्लर में तो खत्म ही बनवे,
4: अच्छा
3: गुगड़े में खत्म बनवे,
4: अच्छा तो नेरी पानी भी आयो कोन के,
3: नेरी पानी आवे है,
4: अच्छा
3: लेकिन नेरी पानी
4: ज्यादा पीने में
3: काम लेते हैं, ये
4: पीने में ही काम लो,
3: पशु ना
4: पालर पानी पीने बढ़िया रहे,
3: बढ़िया रहे,
4: कहीं कहीं फायदा इरा
3: बीमार कोन में लीवर खराब कोन में लोगा का,
4: अच्छा पालर में लीवर खराब नहीं है,
3: और
4: ठीक बात है, और गोडा भी क्या कोन दुखे,
3: हां
4: और बाजरे री खेती करो खासा,
3: बाजरे की खेती करे सब,
4: हां तो बाजरो जिमो,
3: बाजरो जिम जेवे कुत्रो जेवे गयांगे,
4: अच्छा तो जिमने बाजरो पौष्टिक रहे,
3: पौष्टिक रहे पूरो
4: गेहूं की तुलना में बढ़िया माना,
3: बढ़िया रहे, बहुत शुगर गुरु है कोनी नहीं तो शुगर उजे वाले गेहूं जिमने,
4: अच्छा
3: तो इसमें कोई कमी नहीं है यहां,
4: हां
3: किसान सब खेती करते हैं,
4: ठीक बात,
3: और उपजाऊ जमीन है, और
4: ठीक बात है,
3: दूसरा यहां सबसे ज्यादा जानवरों की रक्षा करते हैं,
4: और पानी ने भी थे संरक्षित कर लो,
3: संरक्षित
4: और आजकल खेती रो लोग बीमो वगैरह भी करा,
3: बीमो भी करा, बीमो सब करा, सब करा, हां करा
4: फसल बीमो,
3: सब
4: फसल बीमो, तो कभी काल कुछ मोहन मिले सहायता,
3: सब मिले
4: यहां के
3: मिले,
4: तो मतलब बीमा कंपनियां भी आप पूरा ध्यान रख रही है,
3: पूरो पूरो,
4: और जगह लोग के सीसी लेवे ये भी लेवा,
3: अब मारे तो लेवड़ो को नहीं बाकी लेवे ही है साहब,
4: अच्छा
3: मैं ही कैसे इस बारे में कम जानकारी रखा,
4: धन पशु ही रखो,
3: धन पशु सब रखा,
4: तो गाय भैंसिया में
3: गाय रखा भैंस कौन रखा,
4: तो दूध लो गरगोई गड़बड़ता हुई गाय का बेचना लोग
3: नहीं, आपने घर कोई गाय रखा आती एक दो गाय रखा
4: दूध
3: अपना घर को जो
4: बाकी बिलावणो करो उरे देखो
3: बिलावणो लाणो कर लियो बारे बच्चे को,
4: बस ठीक बात है, तो गाय किस नस्ल की ज्यादा रखी जाता रहते,
3: गाय अपन देसी गाय रखा एक राठी गाय दो गाय है बस,
4: अच्छा राठी को बढ़िया वे
3: ठीक वे,
4: ठीक बात है, अमेरिकन गाय तो कोनी ज्यादा,
3: अमेरिकन आपने है कोनी
4: मतलब ज्यादा देसी गाय है,
3: देसी गाय
4: पेंशन
3: या राठी गाय या भैंस भी है,
4: ठीक बात है, अब अपना देखो बडेरा परंपरा में राखता है कि वर्षा जल भी संरक्षित करता है, पशु भी राखता है, खेती राखता है, आपनो पुरातन काम है,
3: काम है,
4: तो आजकल जो को जमानो है वो आ चीजों थोड़ो हटे, पढ़ाई लिखाई को ज्यादा
3: है,
4: तो गांव में पढ़ाई लिखाई को माहौल करो,
3: पढ़ाई गाँव और सब पढ़ाई लिखाई है बहुत ज्यादा है, हमारे
4: आज नौकर खूब है
3: बहुत ज्यादा,
4: बहुत ज्यादा घर घर
3: घर घर लगभग,
4: और बाया पढ़ाई
3: बाया फुल पढ़े फुल नौकरियां करे हाल
4: है,
3: लगभग आजकल जो भी लड़की है
4: नौकरियां में भी खूब है
3: बहुत है,
4: कोई लड़की कम नहीं पढ़े
3: नहीं कोई नहीं,
4: गांव में स्कूल वगैरह
3: स्कूल गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, साइंस फैकल्टी है,
4: अच्छा साइंस आर्ट्स दोनों फैकल्टी है,
3: आर्ट्स है वो, अच्छा। एग्रीकल्चर भी है,
4: ओहो तीन तीन फैकल्टी
3: वोकेशनल भी है सब है,
4: तो फिर पढ़ाई की तो कोई कमी
3: को? कोई कमी नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी है,
4: अच्छा
3: एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और है,
4: तो आपने सपा का वगैरह भी बोलो,
3: हॉस्पिटल यहाँ क्या है कि पीएससी नहीं है,
4: अच्छा
3: वो एक जरूर कमी है,
4: अच्छा और पशुओं के वास्ते,
3: पशुओं के वास्ते है,
4: अच्छा
3: पशुओं के एक डॉक्टर बैठते हैं,
4: अच्छा
3: वेटरनरी
4: हॉस्पिटल है,
3: हाँ वो हॉस्पिटल है, वो नहीं पीएससी नहीं है, पीएससी की जरूरत है यहाँ, जनसंख्या यहाँ की 5000 जनसंख्या है,
4: अच्छा
3: तो वो भी
4: तो पता है पीएससी पीएचसी नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो पता है आसपास कोई गांव में वाली
3: दुगोली पीएससी है,
4: अच्छा दुगोली नेड़ो ही है,
3: नेड़ो तो है लेकिन अपने गांव में यहाँ होनी चाहिए।
4: हाँ, सुविधा हुई है तो बड़ी है सर, खैर अत बड़ी होती। आजकल एक प्रतिवादी देख रहे हैं कि लोग जकी युवा पीढ़ी है वह खेती में विमुख हो रही है, चाहे पुरुष हो महिला हो, काम करना कम चाहे, खेती कम कम करनी चाहे। पहले तो लोग ज्यादा से ज्यादा करनी चाहता, आदमी रिश्ता नाते में पहचानी हुई थी भाई जमी की है खेती की करे, आजकल जो को कम कम करनी चाहे।
3: हाल कहीं टाबर कहीं हाल पड़े तो वे ज्यादा पढ़े में ध्यान देवे खेती की तरफ विमुख हो जाए।
4: नहीं माता बिना पहला पद एकदा खेत खेत निदान करती दूजी उभी रहती, आजकल एडी बात कम देखनी।
3: हाल कम कहीं है ही कोनी खेती करे,
4: पशु भी कम रखे,
3: पशु भी कम रखे,
4: कहीं कारण है
3: कारण है शिक्षा पर ज्यादा जोर दे दिया।
4: अच्छा, किसाना भी शिक्षा पर
3: ज्यादा जोर
4: पर हमज मांगी भाई पीढ़ियों में ज्यादा फायदा,
3: ज्यादा फायदा है, इसलिए लोग ना पढ़े की तरफ आकर्षित हो रहे
4: हैं,
3: खेती कम कर रहे
4: हैं। या वो देखो भाव कम रह रही है मार्केट में,
3: वो भी कारण है, लेकिन मेन कारण पढ़ाई का मुख्य कारण होने
4: की। तो खेती पोसाई जाए कहीं महंगी वाले,
3: अब देखो अलग अलग जो घर के काम

0: जो प्रदूषित जो अनाज है ना हाँ, वो नहीं होता है यहाँ।
1: अच्छा, वो नुकसान करे,
0: नुकसान करे वो।
1: अच्छा, और निरोग एकदम जैविक
0: निरोग जैविक खेती है,
1: शुद्ध जैविक खेती है, ये जगह बड़ा पुरातन समय
0: करता है, करता है, आई है।
1: बहुत बढ़िया सा पृथ्वीराज जी, आप मिलिया और जकी बदल करी ना साहब, घणो घणो धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद आपका।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: हाँ, तो बयां थे आप बतल हुनीर पृथ्वीराज जी भी, जगह आपरा अनुभव, हाँ खेती और जगह वृक्षारोपण के बारे में भी आपरा बताया, और आपने भी बताया, देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाना है, पशुओं को भी ध्यान रखना है, पक्षियों को ध्यान रखना है, खेती भी करनी है, हैं तो आप लोग किसान रहो, धर्म में खेती करना रहो। और देखो भैया, बाजार भाव री पान ली आइए, कृषि मंडी नागौर, तो थाने पहला बता दा बाजार भाव पच्चे होना था ना गीत, तो आज नागौर मंडी में मूंग रिया 5,575 रुपया प्रति क्विंटल, गंवार बिकी 5,000 लेर 5,700 रुपया प्रति क्विंटल, जीरे री बोली लगी आज 17,000 लेर, परी रूपरे में 21,000 रुपया प्रति क्विंटल, सौम प्रदामणी में जबरिया नीचे में 7,000, ऊपर में 13,500, इसब गोल्डियो 9,000 लेर पर और ऊपर में 13,300 रुपया, अषाढ़ियों बिकियो आज 5,600, दाना मेती 5,761, सिंधी सो 6,000, 7,400 रुपया प्रति क्विंटल, तारा मिटोरियो 5,562 रुपया प्रति क्विंटल, जमारी 4,500, 6,000, तिल काला तो 9,011, सफेद 10,011,800, और चणो हो 5,000 ले पर 5,625 रुपया, सरसों जगह 40% फेटाली 22,750। ये है बाजार भाव, अगर कोई बाहर भी जिन्स है तो वो ये भाव ले सके और बेच सके। और देखो भाई, यहाँ थाना उड़ीक रहे हुए कि भाई की नमकीन पर से तो ठीक रहे, मतलब कीन की कोई गीत होना वहाँ कई भाई जो कार्यक्रम सुने वो इन वास्ते ही सुना है कि बढ़िया कोई मारवाड़ी लोक गीत तक भजन होना है, तो आज देखो थाना सुनावा माला शर्मा एंड पार्टी रोकेड़ो और लोक गीत।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

माला शर्मा और मेरी सखी सहेलियाँ रे हाथे आवाज़ रे माए गायड़ो और लोक गीत सुनियो और बहुत ही आप आनंद भी उठाए वेलो। और देखो भाई यहाँ राजस्थानी भाषा रे माए गायड़ा और विशेषकर मारवाड़ी रे माए गायड़ा आ लोक गीतारो एक अलग ही आनंद है और आपने रो आनंद लेनो भी चाहिए, सायकाल रो थोड़ो रेडियो सुनना भी चाहिए, रेडियो सुनने की आदत भी होनी चाहिए। देखो भाई अब बार बरखा रो सीजन है तो इंडे माए आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाना है। किसान भाई अगर खेत में पेड़ लगाना चाहे तो खेतड़ी रो या बोंटी रो लगा सके ताकि खाद भी वह और पेड़ भी लाग जाए। आजकल एक थार स्वभाव है खेतड़ी जगह काजड़ी द्वारा विकसित है बीरे माई बारू मास सांगरिया लगे बढ़िया रहे। और अगर आप बाकी छायादार पेड़ लगवा नीम रो है शीशम रो है लगा सका, फलदार वृक्ष भी लगा सका आपने हटे आम है नींबू है पपीतो है बेर है घना ही खलडा है चीकू है सब है। तो भैया इन ये सब आपने काम करना है और घड़ी रे टकटकी के आपने कार्यक्रम तेड़ो वक्त वेरियो पूरो इन वास्ते दीरा प्रेम भाई ने सीख करा। राम राम।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम अभी किसान भाई सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1336वां भाग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
2: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
3: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था, कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
2: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
3: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
3: जी, तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ,
3: देखिए, रखो,
4: मुझे छोड़ दो। हाथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़ दो।
2: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
7: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
6: वहाँ अंगुलीमाल है।
7: हाँ प्रभु,
6: वो बहुत बड़ा डाकू है।
8: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
6: जाए।
8: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
7: ना जाएं प्रभु।
9: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में

0: परम स्वागत है।
1: करे मेरा स्वागत।
2: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुली माल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल से कहा,
0: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
3: हाँ ठीक है।

0: पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते? जी।

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए।

0: जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधि भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
0: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के

0: दो पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
3: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी।
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी।
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डीफिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।

0: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
1: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
2: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से।

हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है।
शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है।
उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक

0: की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरनी चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज का गाया, लेकिन हम आपको बता दें कि इस गीत को पसंद किया है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने, और पलेश टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष ने, और साथ ही इसे पसंद किया है बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डोल बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर 20 साल बाद फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम है और कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोडके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मेरी हमसफर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आप सुनना चाहते हैं परिचय फिल्म का ये गीत, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का दिल से कार्यक्रम में ये गीत।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक झलकी, भोपाल की ट्रेन। इस झलकी के लेखक है तपन भट्ट। तो आइए सुनते हैं भोपाल की ट्रेन नामक ये झलकी।

0: इतनी भीड़ है यहाँ, अब क्या करूं, किससे पूछूं? हाँ, ए भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब।
1: भाई क्या है?
0: भाई साहब, मैं एक घंटे से इस प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा हूँ, पर
1: अच्छी बात है अजी, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं भी सुबह दो चक्कर नुक्कड़ के बरगद के जरूर लगाता हूँ। हाँ
0: अजी, आप बात तो सुनिए।
1: अजी तो मैं करके आ रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, वैसे तो आप मेरी बात ही सुन रहे हैं, पर
1: अजी पर क्या, जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि बात सुनिए?
0: अजी आप समझे नहीं।
1: अच्छा, मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं? आप सोचते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं।
0: ओफो, आप जाइए प्लीज।
1: जाइए प्लीज? भाई क्या मतलब? अजी मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया था यहाँ, आपने खुद मुझे आवाज देकर बुलाया था। हाँ
0: गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए।
1: है ये स्टाइल ठीक है? आइंदा कभी ऐसे मत बुलाना। वैसे भाई जी, वे आपने मुझे बुलाया क्यों था?
0: देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ है।
1: क्यों
0: क्यों, क्या मतलब?
1: अरे भाई तुम क्यों पूछना चाहते हो इंक्वायरी ऑफिस का पता?
0: मुझे काम है।
1: क्या काम है?
0: अजी है कोई काम?
1: अरे भाई फिर भी।
0: अजी क्या फिर भी, मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब?
1: अरे वाह भाई, आप मुझसे पता पूछ रहे हैं कि नहीं?
0: हाँ पूछ रहा हूँ।
1: तो फिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आखिर आप वो पता क्यों पूछ रहे हैं?
0: भाई कहा ना, मुझे काम है।
1: अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो काम क्या है।
0: अजी मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब, आपको पता बताना है तो बता दो, नहीं तो मुझे माफ करो।
1: अरे ने, ने, ने, ने, आप तो खामा खामी नाराज हो गए। अरे भाई मुझे पता बताने में क्या एतराज हो सकता है, अभी बता देता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद?
0: अजी आपके पता बताने का धन्यवाद।
1: अभी मैंने बताया कहाँ है।
0: नहीं नहीं, मतलब आप पता बताने को राजी हो गए ना, इसलिए।
1: अजी अभी राजी तो हुआ हूँ, पता थोड़ा ही बताया है, और अभी नहीं बताऊं तो है? अजी आपका धन्यवाद तो बेकार चला जाएगा ना।
0: हाँ
1: इसलिए धन्यवाद पता बताने के बाद देना।
0: अच्छा
1: हाँ, अब देखो यहाँ से सीधे जाओ,
0: सीधे
1: फिर दाहिने मुड़ जाओ, फिर 10-12 कदम चलने पर एक दर्द जाएगा।
0: अच्छा
1: उसमें दाहिने मुड़ जाओ।
0: हाँ।

0: फिर 10 कदम आगे चलो और फिर 10 कदम पीछे चलो।
1: है? 10 कदम आगे चलू फिर 10 कदम पीछे चलू तो फिर मैं चलू ही क्यों?
0: अजी तो मत चलो, खड़े रहो यहाँ।
1: अजी अजी तो आप कहाँ चल रही है?
0: अरे जब आप कह रहे हैं कि मैं चलू ही क्यों तो मैं पता बताऊ ही क्यों?
1: अजी देखिए भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब 10 कदम आगे चलना हो फिर 10 कदम पीछे चलना हो तो चला ही क्यों जाए?
0: अजी तो आपको पता मालूम करना है कि नहीं?
1: अजी करना है।
0: अजी तो फिर तो चलना तो पड़ेगा ही।
1: अच्छा ठीक है बताइए।
0: तो बस उसके बाद सामने एक वजन तुलने की मशीन आएगी।
1: अच्छा।
0: और उसके बराबर में ही एक किताबों की दुकान है।
1: अजी किताबों की दुकान से क्या मतलब?
0: अजी क्या मतलब क्या, किताबों की दुकान का मतलब जहाँ पे किताब मिलती है।
1: अजी पर मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए।
0: अजय भाई तो बता रहा हूँ बरखुरदार, उस किताबों की दुकान के ठीक सामने इंक्वायरी ऑफिस है।
1: अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ।
0: सुनिए
1: क्या है,
0: ऐसे ही चल दिए? एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर आपको पता बताया और तुम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते?
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, अब ठीक है?
0: हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज। हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये आ गया दरवाजा और वो रही वजन तुलने की मशीन, ये किताबों का, हाँ वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। हे भगवान, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, लाज रखना। गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग
1: जी सर, मैं
2: हाँ हाँ
1: सर मैं आया हूँ।
2: आप आए हैं ये तो मैं भी देख रहा हूँ।
1: हाँ सर, हाँ मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है, ये रही मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सर।
2: ज्वाइनिंग रिपोर्ट?
1: जी सर।
2: ये कोई वक्त आने का, एक घंटा लेट
1: सर। वो बात
2: सर वो क्या, आज ड्यूटी के पहले दिन ही लेट?
1: हाँ सर वो रास्ते में।
2: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो और तुम मानो कि तुम लेट हो।
1: हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन
2: जब मानते हो लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्या है?
1: सर बात ये थी कि।
2: खैर छोड़ो, यहाँ इस कुर्सी पर बैठो।
1: जी।
2: देखो ये पूछताछ ऑफिस है।
1: हाँ।
2: समझे?
1: जी।
2: किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई जानकारी मिलनी चाहिए, समझ गए?
1: समझ गया सर।
2: और हर यात्री से बड़े प्यार से और धीरे धीरे बोलना, समझ गए?
1: जी सर।
2: तो अब शुरू करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कोई बात हो तो मेरे कमरे में आ जाना।
1: जी के सर। आ जाऊंगा सर।
2: मैंने कोई लतीफा सुनाया है?
1: नहीं तो।
2: तो हंस क्यों रहे हो?
1: वो तो यूं ही हंस रहा था सर।
2: ठीक है बैठ जाओ, अब ध्यान से काम करो।
1: हे भगवान, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था?
3: हे भगोड़े राम खारे खारे गरमा गरम भगोड़े वाले, खारे गरमा गरम खस्ता भगोड़े बढ़िया भगोड़े वाले खारे।
1: ए पकौड़ी वाले।
3: आए बाबू जी।
1: हाँ
3: क्या है बाबू जी?
1: भैया कैसे देते हो पकौड़ी?
3: कागज में बांध के ऐसे देते हैं बाबू जी।
1: हैं? मेरा मतलब यह है कि क्या भाव देते हो?
3: 250 रुपए की 10 किलो।
1: 250? अबे 100 ग्राम कितने की देता है?
3: अब खुद ही हिसाब लगा लो बाबू जी, गणित नहीं आती है क्या?
1: अबे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठा हूँ यहाँ? खैर छोड़, लास्ट 100 ग्राम पकौड़ी दे।
3: नहीं दे सकता।
1: नहीं क्यों नहीं दे सकता?
3: खत्म हो गई है।
1: अरे खत्म हो गई तो फिर चिल्ला क्यों रहा था भाई, पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम।
3: अब बाबू जी दिन भर ऐसे चिल्लाते रहते हैं, वो तो आदत पड़ गई है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था।
1: ऐसे ही कह रहा था।
3: हाँ ए पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम खाले खाले।
1: कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, अब कोई झक्कन चक्कर मिल गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ये कोई आ रहा है
4: क्या? यही इंक्वायरी ऑफिस है?
1: हाँ भैया यही है।
4: क्या बता सकते हैं कि मोहन देसाई कहाँ रहते हैं?
1: मोहन देसाई?
4: हाँ हाँ मोहन देसाई, बहुत सी फिल्में बनाई हैं उन्होंने और अब बना रहे हैं देव मेरा नाम, मुझे उनसे मिलना है।
1: अरे मुझे क्या पता भैया कहाँ रहते हैं?
5: नहीं मालूम भैया।
1: नहीं
5: तो ये बताओ कि सुभाष रई कहाँ रहता है?
1: सुभाष रई?
5: हाँ हाँ सुभाष रई, लेजी मैन, यू डोंट नो, शोमैन शोमैन।
1: जी मुझे क्या पता कहाँ रहता है वो।
6: खैर छोड़ो, ये बताओ कि नीलकमल कहाँ मिलेगी? नीलकमल हमें दीवारों में चुनकर चली गई, देखो बताओ कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी।
1: अजी मुझे क्या पता कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी।
5: अरे नहीं मालूम तो फिर मैं कैसे गाना गाऊंगा कि आएगा आने वाला, 1945 में गाया था, तूने भी सुनाऊंगा बोल।
1: अरे पर आप ये सवाल सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई?
5: अरे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, अब तुझसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा बोल।
1: अजी भाई साहब इस पूछताछ का मतलब है रेलवे पूछताछ, यहाँ रेलों के बारे में पूछते हैं।
5: अच्छा रेलों के बारे में?
1: हाँ।
5: इंक्वायरी ऑफिस

0: रेल चले
1: हाँ?
0: जयपुर जोधपुर रायपुर धौलपुर खंडाला मंडाला और भोपाल चले।
1: देखिए भाई साहब, अगर आपको रेलों के बारे में पूछना है तो पूछिए, वरना जाइए यहाँ से।
0: ठीक है, अब हम रेलों के बारे में पूछते हैं भैया। ये जो होते हैं ना लाल लाल डब्बे जो इंजन के पीछे चलते हैं, कहाँ बनते हैं?
1: जी मेरे घर पे बनते हैं। अजी डिब्बे का बनते हैं और इंजन का बनता है, इस बात से मुझे क्या मतलब?
0: झूंझल क्यों खाते हैं आप? अब तो मैं रेलों के बारे में ही पूछ रहा हूँ ना।
1: अजी रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
0: रेलों के आने जाने के बारे में?
1: हाँ।
0: अच्छे भाई साहब, ये रेल क्यों आती है?
1: भाई यात्रियों को लेने आती है।
0: फिर जाती क्यों है?
1: अरे उन्हें लेकर जाती है, इसलिए जाती है। मगर तुझे कहाँ जाना है?
0: मुझे तो कहीं नहीं जाना रे, वो थोड़ा फिल्म सिटी जाना था, इसलिए आ गया रे। जाऊं क्या?
1: अरे बचा,
0: जाऊं क्या रे?
1: अरे चलो जाओ ऐसे। भगवान, कैसे कैसे लोग मिले पता नहीं।
2: अरे भाई साहब जी, भाई साहब जी।
1: क्या है भाई साहब, क्यों आप रहे हैं आप?
2: जी भाई साहब जी, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से बक्कर आ रहा हूँ मैं।
1: क्यों भैया, क्या बात आ गई?
2: मैं जाना चाह रहा था भाई साहब की ये भोपाल जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाती है?
1: भोपाल जाने वाली ट्रेन?
2: हाँ जी भाई साहब जी।
1: हाँ एक मिनट जरा देख के बताता हूँ। ये वो भोपाल, हाँ भैया वो तो 8 बजे जाती है और वो तो गई
2: गई।
1: हाँ जी गई।
2: अजी भाई साहब जी, भोपाल जाने वाली ट्रेन?
1: हाँ भैया भोपाल जाने वाली ट्रेन।
2: अजी भाई साहब जी, वो वाली जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है?
1: अरे हाँ भैया, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है वो ट्रेन।
2: अजी भाई साहब समझे नहीं आप, वो 7 डाउन है, वो पूछ रहा हूँ मैं।
1: मुझे मालूम है 7 डाउन है और 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, 8 बजे जाती है, भोपाल जाती है। कहाँ है वो ट्रेन? गई
2: गई क्या?
1: हाँ गई।
2: अच्छा ठीक है भाई साहब,
1: एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, समझता नहीं बात।
2: अजी भाई साहब जी, अजी ऐसा तो नहीं वो शंटिंग करने गई हो, आपको पता ही नहीं हो?
1: अरे शंटिंग करने 7 बजे जाती है और इस समय 8:15 बजे हैं, समझे?
2: नहीं कभी कभी लेट भी तो हो जाती होगी ना।
1: अरे आज नहीं हुई लेट।
2: अच्छा तो चली गई मतलब?
1: हाँ चली गई।
2: ठीक है भाई साहब,
1: क्या आदमी है, कौन सी चक्की का?
2: हाँ भाई साहब
1: क्या है?
2: अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो?
1: मैं तो पागल हूँ, ये कंप्यूटर किसने रखा है यहाँ? इसमें देख कर बताया मैंने कि भोपाल जाने वाली ट्रेन गई,
2: इसमें सब आ जाता है क्या?
1: हाँ सब आ जाता है।
2: अच्छा भाई साहब ठीक है फिर।
1: क्या आदमी है, कैसा आदमी है, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में।
2: अजी भाई साहब जी,
1: अब क्या है भाई,
2: कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
1: अजी तुम मेरे कोई जीजा जी लगते हो, कोई भाई हो मेरे, कोई दोस्त हो, क्यों मजाक करूंगा तुमसे मैं?
2: खाओ मेरी कसम।
1: तेरी कसम? तेरे पूरे खानदान की कसम? भोपाल जाने वाली ट्रेन गई?
2: वास्तव में गई क्या भाई साहब?
1: अरे वास्तव में गई,
2: सच्ची?
1: अरे सच्ची में गई, रियल में गई, भोपाल जाने वाली ट्रेन गई।
2: अच्छा
1: हाँ
2: ठीक है भाई साहब।
1: मेरे दादा आज मैं पागल हो जाऊंगा
2: भाई साहब जी।
1: अरे क्या है, अरे यार भोपाल जाने वाली ट्रेन गई?
2: नहीं वो तो मेरे को पता है गई,
1: तो
2: मैं तो पूछ रहा था कि पूरी गई क्या?
1: नहीं आधी खड़ी है,
2: खड़ी है ना।
1: हाँ
2: खुली
1: और ट्रेन कैसे जाएगी, ट्रेन तो पूरी जाती है।
2: पूरी जाती है क्या?
1: हाँ
2: फिर तो इंजन भी क्या होगा?
1: अरे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे, इंजन ही तो दे जाता है ट्रेन को।
2: वो भाई साहब वो गार्ड का डिब्बा भी गया क्या?
1: अरे गार्ड का डिब्बा, डाक का डिब्बा, घी का डिब्बा, सारे डिब्बे गए, तू जा यहाँ से।
2: पहिए भी गए क्या भाई साहब?
1: अरे कौन से जन्म का बदला ले रहा है, पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे?
2: अजी भाई साहब मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा।
1: अरे जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई?
2: क्यों छत भी जाती है ट्रेन के साथ?
1: नहीं पीछे पीछे चलती है वो तो। ट्रेन में तो लगी होती है छत।
2: अच्छा
1: हाँ
2: ठीक है भाई साहब फिर।
1: कैसा आदमी है
2: भाई साहब जी?
1: क्या
2: भाई साहब जी, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या?
1: क्यों नहीं हो सकता, आओ पीठ पर बैठो मेरी, चलते हैं अपन भोपाल।
2: अजी ऐसे तो देर हो जाएगी,
1: चल तुम्हारा घर है, कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे।
2: चलो भाई साहब मैं क्या करूं, ट्रेन कैसे चलेगी, मैंने टिकट भी लिया था।
1: अरे तुम लेट हो गए भैया, ट्रेन का टाइम हो गया था इसलिए वो चली गई।
2: अरे तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई, मैंने टिकट भी लिया था ना।
1: तो टिकट लिया था तो तू कोई भगवान हो गया क्या?
2: मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को भोपाल जाना, आप मेरे को भोपाल भेजो।
1: मैं तेरे को भोपाल कैसे भेजूं?
2: कैसे भी भेजो, और ट्रेन को वापस बुला लो, मैं लटक कर ही चला जाऊंगा।
1: अरे ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे।
2: अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो रेलवे वालों की धांधली है, रेलवे हाय हाय रेलवे।
1: अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई,
2: मेरे को भोपाल भेजो नहीं तो मैं ऐसे नारे लाऊंगा।
1: देखो भैया मैं भोपाल कैसे भेज सकता हूँ?
2: अरे कैसे भेजो ये आप सोचो, आपकी गलती है। अजी ये कोई लगा रखी भाई साहब, देखो ये
1: भैया एक काम करो, ऐसा करो तुम बस से चले जाओ।
2: बस से?
1: हाँ
2: बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
1: अरे पर ट्रेन तो चली गई।
2: अरे तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो
1: गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
2: आपको 1-8 डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वालों को असुविधा ना हो।
1: हाँ मैं आपकी सलाह रेल मंत्री तक पहुँचा दूंगा श्रीमान,
2: पर मैं अभी भोपाल कैसे जाऊँ?
1: अभी अभी कैसे जाओ? हाँ भैया आप बस से चले जाओ। भैया
2: बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
1: अजी आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस से चले जाओ, पैर पड़ता हूँ, हाथ की उतारू आपकी।
2: अच्छा ठीक है भाई साहब, जब आप इतना ही कह रहे हो तो फिर मैं बस से चल जाता हूँ।
1: धन्यवाद भाई साहब, हे भगवान मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है।
2: भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी,
1: अब क्या है?
2: वो आप एक काम कर सकते हैं क्या?
1: बोलिए।
2: वो बस स्टैंड बहुत दूर है यहाँ से,
1: छोड़ के आऊँ क्या?
2: नहीं नहीं नहीं आप ऐसा करिए, एक टिकट मेरा बुक करा दीजिए फोन करके, मेहरबानी होगी।
1: टिकट भी कराना पड़ेगा।
2: हाँ भाई साहब जी
1: ठीक है।

0: नंबर बताना जरा।
1: वो नंबर तो भाई साहब वो,
0: हाँ ठीक है ठीक है, ये 31 32 22।
1: हाँ भाई साहब यही था।
0: हाँ 3 1 3 2 2 2। हेलो, हाँ जी बस स्टैंड इंक्वायरी से बोल रहे हैं? हाँ साहब, वो भोपाल जाने वाली बस की एक टिक। हाँ जी नहीं भाई साहब, मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है। हाँ जी भाई साहब, मैं इतना पूछना चाहता था कि ये भोपाल जाने वाली बस की कोई टिकट मिल सकती है? हैं साहब? नहीं, क्यों? भोपाल जाने वाली बस गई? हट, ठीक है। अब भाई साहब, वो भोपाल जाने वाली बस तो गई।
1: गई क्या?
0: हाँ
1: पूछो, वास्तव में गई क्या?
0: हेलो, वास्तव में गई क्या? हाँ भैया वास्तव में गई।
1: ये भी पूछो, पूरी गई क्या?
0: हेलो, पूरी गई? अबे तेरी तो, हट।
2: ए पकोड़े गरम, खाले खाले गरमा गरम पकोड़े, अरे पकोड़े गरमा गरम पकोड़े भाऊजी।
0: अरे नहीं चाहिए पकोड़ी।
1: मैं पकोड़े देने थोड़ी आया हूँ।
0: तो क्या करने आया?
1: मैं तो मैसेज देने आया हूँ।
0: किसका मैसेज?
1: वो जो सामने बेंच पर बैठा है ना, चश्मे वाला,
0: वो।
1: हाँ
0: क्या कह रहा है वो?
1: उसने पूछवाया कि भोपाल वाली ट्रेन गई क्या?
0: ये इधर आ, ये रही भोपाल वाली ट्रेन।
1: मगर मेरे को क्यों मार रही?
0: अरे मेरे को
1: भोपाल वाली ट्रेन तो जयपुर वाली है।
0: मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। मैं अभी सर से कह के आता हूँ। सर परेशान हो गया हूँ, मैं नौकरी नहीं करूंगा, आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए सर।
3: अरे आज पहले दिन इस्तीफे की बात कर रहे हो?
0: अरे सर पहले दिन ही मैं तो बहुत परेशान हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा, आप तो आज ही इस्तीफा ले लीजिए।
3: ठीक है अपना इस्तीफा दे दीजिए और चार्ज भी दे दीजिए।
0: ठीक है सर, ले लीजिए।
3: तो बताइए भोपाल वाली ट्रेन गई क्या?
0: हाँ गई।
4: विविधा कार्यक्रम में भोपाल की ट्रेन नामक ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM FM 103.7 MHz पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

0: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
2: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है।

0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल

0: टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम दर्द भरे गीत फिल्म संगीत।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया आहा फिल्म से। गीत की रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दर्द भरे गीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत। राजा मेहंदी हसन खान ने इसे लिखा है और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्द भरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार का गाया नमक हराम फिल्म से। गीत की रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 होने को हैं। अब आप विविध भारती मुंबई से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म बहु बेगम का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों के थे। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म सलाखें का गीत सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर, फिल्म का नाम प्यार का मौसम, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो हाथ में। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही

0: अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
1: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान, आज के फनकार।

0: अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा। उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं। लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है बता? अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? ठहरो, आओ। आओ अब आयो हाथ में। आओ आओ। शाबाश।
0: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी, इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो, पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि

0: एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे? मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की, और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग-अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी।
1: अरे काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया।

0: बोल हरि
1: हरि बोल हरि हरि बोल।
2: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
3: कौन कौन?
4: डर गए क्या? कसम भैरव की मैं कोई भाग या भालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
3: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
4: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
3: यहाँ आपका कोई काम नहीं
4: है? है काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
3: आपको लाने के लिए मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
5: क्या हुआ बेटी?
3: बाबा
5: क्या हुआ?
3: देखो
5: काली बाबू, आप
4: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नगदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
6: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब।
4: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
6: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
3: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
4: बस बस बात हो गया, बड़े बाबू इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना।
6: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
4: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था, आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है, कसम भैरव की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
2: यहाँ दिलचस्प बात ये है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं, जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
4: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
7: आप घर में है?
4: मैं
7: आदाब से विष्णु साहब,
4: आइए आइए सेठ जी, आइए।
8: नमस्ते सेठ जी।
4: नमस्कार, दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ, मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
9: इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
8: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
4: ऐसा नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया। हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना, हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी

फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रूदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे FM FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा भी यहीं संपन्न होती है। कल दिन में हमारी पहली प्रसारण सभा में 8:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।